0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां।

জুমিতাম ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 मई वर्ष 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और

0: मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: सेहत के बारे में बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियां हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है, जिसे अर्जित करने के लिए बहुत अधिक धन निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। संयमित संतुलित दिनचर्या ही पर्याप्त है। बचपन से हमें एक मंत्र सिखाया गया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह भी सेहत के लिए एक अच्छा मंत्र है। लेकिन कितने लोग इस मंत्र को जीवन में आत्मसात कर पाते हैं? जो करते हैं वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वे समय समय पर बीमार पड़कर शरीर को धीरे धीरे अशक्त करते चले जाते हैं। सदियों पहले तपस्वी लोग सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते थे, क्योंकि उनका शरीर पुष्ट रहता था। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास कुछ युवक ज्ञानार्जन के लिए पहुँचे, तो युवकों को देख कर स्वामी विवेकानंद बड़े निराश हुए। वे सभी युवक कृशकाय थे, बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें सबसे पहले सलाह दी कि जाओ, पहले खेलो कूदो और अपना स्वास्थ्य बनाओ, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे जीवन की निशानी है, और स्वस्थ मन से ही सही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। स्वामी जी की बात सुनकर युवकों ने उनका कहना माना और अपनी सेहत को जल्दी दुरुस्त कर लिया। फिर स्वामी विवेकानंद से मिले तो स्वामी विवेकानंद ने प्रसन्न होकर उनको जीवन की दिशा के कुछ सूत्र दिए। स्वामी विवेकानंद स्वयं स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते थे। उनकी दिनचर्या बहुत संतुलित थी, उनका खान पान भी सात्विक था। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व बहुत सुदर्शन था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने विश्व कल्याण की दिशा में अपना जो योगदान किया उससे भुलाया नहीं जा सकता। उनके साथ जितने युवक भी जुड़े वे सन्यासी हुए, सबके सब अपनी सेहत के प्रति सजग थे। उत्तम स्वास्थ्य विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। समाज में अनेक उदाहरण देखते हैं कि बड़े बड़े धन वाले भी अक्सर बीमार मिलते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन सेहत ठीक नहीं रहती। तरह तरह की बीमारियों ने शरीर पर कब्जा कर लिया है। जीवन का सारा सुख वैभव खराब स्वास्थ्य के कारण नष्ट हो रहा है। ऐसी दौलत किस काम की जो हमें उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान ना कर सके। हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना है,

संतुलित आहार लेना है। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में आरोग्य का सदा ध्यान रखेंगे। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था सेहत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम में आइए हम सब मिलकर सुमिरन करें उस परमपिता परमेश्वर का जिसने समस्त सृष्टि की रचना की।

आप सुन रहे थे उमा विजय की आवाज में ये भक्ति रचना। वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

गार्गी बैनर्जी के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। और अब आइए सुनते हैं समूह सर में ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

आज के प्रसारणों में आपसे कुछ देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती में बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे और पुनः 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे प्रातः 9:00 आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कार्यक्रम सुगम संगीत को आप सुन सकेंगे प्रातः 9:10 पर और पुनः 11:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। वहीं कार्यक्रम फिल्म संगीत को आप सुन सकेंगे प्रातः 11:30 पर।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं हेतु कार्यक्रम युववाणी। प्रायोजित कार्यक्रम ढीणेरी बाता आप सुनेंगे शाम 5:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 6 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी को आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7:00। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, वहीं रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आप सुन रहे थे आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। समय हो चला है किसान श्रोताओं हेतु कार्यक्रम खेती नी बात का।
1: खेती नी बात हमारा वारा हंग्रे किसान भाई ने बोने ने विना बेनो राम राम राम राम। हवा नाटे में अपने जी खेतर नो काम है ये करवो है क्योंकि आ नौ तप्पो भी साली रथको है। इन्हें में खूब गर्मी पड़ी रही है, खूब लू भी साली थकी है। तो अपने ने हवा ना टाइम में जे वक्त टाड़ो मौसम रे ने ताप ने नकरे एने वक्त जी भी खेतरों नो काम काज है ये अपने ने कर लेव जुए क्योंकि किसान भाई आज भी खेतर ने साफ सफाई वगैरह है जुताई वगैरह है। मैं नहीं रह गई हूँ तो आज समय है हवाना हाजने वक्त जे वक्त वदार लू नहीं पड़े ने गर्मी नहीं पड़े एवं समय में अपने जे भी खेतर नु काम काज है ई करवू है। ने पसे जिम जिम दाड़ो बढ़े गर्मी भी खूब पड़े रही थकी है तो गर्मी नो भी बंदोबस्त अपने करे ने पसे जे भी खेतर नु काम काज है ई करवू है। किसान भाईयो खेतर नु काम काज तो अपने करव से पण एनी हाथी आ ताप खूब पड़े रही थको है तो अपने ध्यान राखी ने पसे जी भी खेतर नु काम काज है करवू है। खास अन्य बात नु ध्यान राखो है जे वक्त अपने एमने तेमने गया ने लू लगी की एवं थी गयु हो एने वक्त अपने लू थी की बचाव जरूर करवो है। किसान भाई देखो आप खेती बाड़ी ने तो बात हर रोज करस हूँ पर आज जरा आ लू थी की बचाव एना उपचार हूँ ई जरा बात कर ले क्योंकि किसान भाई ने तो एमने तो एमने खेतर में जाओ पड़े एमने उतरे वाले भी साली थके हैं ए भी जाओ पड़े तो भाई कि आप बांगने नकरे लू लागी गई उठ्यो अपने बुखार आ गयो उल्टी थी रही है दस्त थी रही है एवं महसूस थी रही थको हूँ।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। क्या कभी सोचा है हमारे यहां सुख हो, दुख हो, गॉसिप हो या फिर ऑफिस की कोई सीरियस मीटिंग, हर चीज का सॉल्यूशन क्या है? एक कप चाय। सिर दर्द हो रहा है, अदरक वाली चाय। बारिश हो रही है, इलायची वाली चाय। दोस्तों से सालों बाद मिले तो टपरी वाली चाय, और अगर कोई रूठा है तो बस कह दो चाय बनाओ क्या, सारा गुस्सा वहीं हवा हो जाता है। श्रोताओं, हमारे यहां इतनी गर्मी में भी अगर मेहमान आते हैं तो पहला सवाल होता है चाय या ठंडा, और जो ठंडा बोल दिया तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि श्रोताओं असली कनेक्शन तो चाय की चुस्कियों के बीच ही बनता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, चाय की मजेदार बातों के बीच उन हाथों को शुक्रिया तो बनता है जो इस चाय को हमारी प्याली तक पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आज का दिन यानी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। इसका मकसद सिर्फ चाय पीना नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन लाखों चाय बागान मजदूरों और किसानों को सम्मान देना है जो कड़कती धूप और बारिश में हमारे लिए ये बेहतरीन पत्तियां चुनते हैं। आपकी हर कड़क चाय के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी है। तो आज की एक चुस्की उन सभी चाय किसानों के नाम।

डरवाओ मुझसे न घबराओ, मुझको खिला सकते नहीं तुम।

है दम बापे, तू आप ही पैमाना बन और आप ही साथी।

0: गया।
1: श्रोताओं, हमारे देश में चाय सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति है। सुबह की पहली किरण के साथ जब रसोई से इलायची और अदरक की महक उठती है तो लगता है जैसे पूरा घर एक नई ऊर्जा से भर गया हो। नुक्कड़ की छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े कैफे तक चाय हर वर्ग को एक धागे में पिरोती है। बहस राजनीति की हो या दफ्तर का तनाव हो या फिर पुराने दोस्तों की महफिल, चाय के बिना हर बात अधूरी लगती है। यह एक ऐसा जादू है जो अजनबियों को भी पल भर में दोस्त बना देता है।

तो श्रोताओं, आज के इस बेहद स्पेशल दिन पर खुद को एक अच्छी सी चाय ट्रीट दीजिए, चाहे वो मसाला चाय हो या ग्रीन टी हो या टपरी की कटिंग चाय। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि अपनों से मिलने का बहाना है। आइए कभी चाय पर, यह वाक्य आज भी दिलों को जोड़ देता है। चाय की प्याली से उठते हुए धुएं में अक्सर बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल के ख्वाब तैरते हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं शिल्पी माथुर द्वारा गाए कुछ मीरा के भजन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं शिल्पी माथुर द्वारा गाए कुछ गीत।

आप सुन रहे थे शिल्पी माथुर की आवाज में ये भजन कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनीकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा

0: देने के लिए सरकार संकल्पित है।
1: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहां आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों का मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर बाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार गांधीधाम भचाऊ भीलड़ी धनेरा रानीवाड़ा मारवाड़ भीमवाल मोदरान जालौर मोकलसर संदड़ी लूनी पाली मारवाड़ मारवाड़ जंक्शन ब्यावर अजमेर किशनगढ़ जयपुर जंक्शन जयपुर गांधीनगर स्टेशन बांदीकुई अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
2: मोदी जी का आह्वान आमजन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बलि से हम बहुत सुरक्षित जीते हैं। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
3: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए

0: उत्तराखंड के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां एआई तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गजल गायक गुलाम अली द्वारा गाई कुछ गजलें।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओ, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओ, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
3: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
3: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
3: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
3: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
3: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने

0: से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोलावन के बारे में कुछ और बातें। शोलावन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहाँ चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़ी से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और

उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वे बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमा इला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
3: दादी माँ, दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ, दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लू। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
1: हाँ अक्कू चल आगे चलते हैं।
2: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे।
1: अरे अक्कू भाई वो देख कटहल का एक पेड़।
0: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है वो भी कटहल से लदा हुआ।
2: वो उसे काटने लगे।
3: काटो मत मुझे कटहल दूंगा तुम्हें तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
0: अच्छा ठीक है
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
2: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: क्या मिलेगा काट कर मुझे। अरे जीने दो मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
2: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे अटकू मटकू
2: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते।
6: पेड़ हमारे दोस्त हैं। जीवन में हरियाली लाओ
7: पेड़ लगाओ
8: पेड़ लगाओ।
9: पेड़ हमारे दोस्त अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
12: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न हुआ। FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां,

0: और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर, बातें हो रही है जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
0: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
0: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको भी जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रहने को इतना आदी था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
0: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
0: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
0: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ
0: हाँ।
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
0: हाँ।
1: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
0: जी।
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो
0: हाँ।
1: कभी रहा ना हो
0: हाँ।
1: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था लेकिन गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा
1: 86 में।
0: क्या बात है, तो ये तो पंत जी का शहर था
1: हाँ,
0: पंत जी का
1: हाँ,
0: इलाका
1: हाँ,
0: था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा मैंने, वो पंत जी अग्गे जी वहां हाँ, पे और रविशंकर जी का वहां पे वो था
0: बिल्कुल,
1: तो ये सब भी
0: उदय शंकर जी का
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं
0: कि
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: पहाड़ों में
1: पहाड़ों में कैसे
0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
0: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है
0: हाँ, हाँ।
1: उस पे वो उस पैटर्न पे रहे और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम
0: बिल्कुल है? और तब तो लंबी लाइनें हुआ
1: करती, लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहां रहे और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना।

0: कपिल से किंग सर्कल आना वहां से पैदल
1: जी,
0: फिर ट्रेन पकड़ना फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
0: तो फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं।
1: जी, जी,
0: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार देंगे
0: उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
1: चरम पर थी,
0: चरम पर फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
1: जी,
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त बजाया करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहां आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
1: जी।
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
1: जी।
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि बड़ा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे
1: जी,
0: हाँ, वो उनका मिल जाना, फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
1: जी,
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह,
0: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था, भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: गजल
0: तो वो गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए
1: जी जी जी। ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वो
0: उसको, हाँ, वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो हुई बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स है उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील
0: जी जी
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था, नीचे
0: अरे बाप रे
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इन दो
0: में
1: गया था।
0: गाया
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो वो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात
1: ये
0: कही
1: मेरे, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ,
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहां, गाने गए, मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट था।

0: तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहता है ना फिर सुनाओ, तो चाहे मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया, हाँ ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था
1: जी।
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मजरू सुल्तान
1: का आशीर्वाद शायर की बात है ना,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी,
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना।
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी,
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी,
1: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब,
1: हाँ, जी, मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका हाँ, आखिरी एल्बम था ये,
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में
0: जी,
1: वो चले गए
0: जी,
1: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी, क्योंकि इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल,
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूं कि आप करें।

0: के लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो? मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी जी जी
0: तो किताब लेके रैपर वेपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडिशन में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने यह गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, सेटिंग माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक को उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने। तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: उनको
0: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वही खत्म हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: जी जी
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत अद्भुत
0: ये अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं ले गए आप,
1: अरे
0: क्यों
1: नहीं ले गए,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजर्व का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके, जिनके मुंह में
1: जबान
0: बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे, उजाले
0: उनकी
1: यादों के, मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा

0: करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीजों को एक्सप्लोर करने का भी, वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह
1: सब
0: से
1: चीजों को संभालते
0: सबको संभालते थे। तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
1: जी,
0: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
1: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने
0: रखते हैं, ऐसा कम होता है
1: जी।
0: तो मैं, हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
1: खयाम
0: साहब आ गए, लक्ष्मीकांत कहले, प्यारेलाल जी आए
1: जी,
0: आनंद जी आए
1: बिल्कुल,
0: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
1: रवि जी आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: खयाम साहब
1: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
1: मुझे याद है, खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं और वहीं एक घंटे बात हो रही है।
0: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत था
1: जी,
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
1: बिल्कुल,
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग अब कहां आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास,
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, जब गानों पे बातें हो रही हैं या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर एक,
0: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर, पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो, चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया
1: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान पे, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला,

0: तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
1: जी,
0: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
1: जी जी,
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
1: जी,
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
1: ओके,
0: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉ, फादर इन-लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन-लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
1: जी,
0: तो वो सब
1: जी।
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई,
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
1: हाँ।
0: कि हम मैंने शादी कर ली है
1: हाँ।
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगी नहीं सबकी। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे
1: हाँ।
0: तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब।
1: हा, हा, हा, हा।
0: तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूं उनके,
1: गजब।
0: और हमारे फादर इन-लॉ जो मौजूद थे, तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, इसमें करेंगे उस पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा,
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे।
1: हाँ।
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी।
1: तो
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है।
1: हाँ।
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी। शानदार शानदार, तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ
1: जी, जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा।
1: वाह।
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में,
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना

0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी, तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी,
0: मतलब किसी लाइन
1: होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं

0: कहां से हूं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोड़वाल द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

अनुराधा पोड़वाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये नगमा कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुनवा रहे हैं पहला गीत आपको फिल्म मैंने प्यार किया से। शब्द रचना है असद भोपाली की, संगीत है राम लक्ष्मण का।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश में आपको सुनवाते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में ये नगमा फिल्म मन से। बोल है समीर के, धुन है संजीव दर्शन की।

फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं मनोज मंतोषर के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत दिया है तनिष्क बागची ने। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और असीस कौर की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

0: जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।
1: तने प्रेम करू छो छो छो, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेन प्यार करना तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो निबलिए अंग्रेज।

के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तनु प्यार कर।

আমি তোমাকে ভালোবাসি আর পঞ্জাবি মে কহতে হরি তো তে বিন মর জানা।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

ಮುದ್ದು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾಳಿ ಹಳ, ಮುದ್ದು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾಳಿ ಹಳ, ಅಯ್ಯರ

0: முத்து தோழி சோரி ஹடா.
1: ஐயோ ரே பிரானு,
0: ஐயோடா அம்ம முத்து தோழி கோவாரி ஹடா.
2: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती. इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता. और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर. लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम. आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई. प्रवेश बिल्कुल मुफ्त. आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं.
3: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का.

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: जरा सा आ, जरा सा सीधो ओ जा जालिमा मर
1: दियो। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना
2: पिपरा के पतवा
1: गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
2: मैं उठते हिलो अरे पुरवा के झोंकवा में आई।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है। प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों

उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो जरूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहां पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी

0: में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीजें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।
1: अरे, ए, ए, ए,

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

0: बन फूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।
1: लिखे जो खत

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साये में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारी विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ दो मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त तो होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।
1: बच्चे मन के सच्चे,

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन

अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत

0: भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan, with its long
3: time, ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने यह बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
5: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और

0: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति।

0: सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग

0: कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना। संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने दिन
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी है आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप
2: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: हाँ, फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें बताएं अपना।
1: हाँ,
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ न कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की में राहीबाई सुमा पोपरे, जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
2: हाँ,
1: चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए। चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती
2: है,
1: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम मान देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
2: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए

0: विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर
1: जी। और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परम्पराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: ने कहा, कुछ हमने कहा, और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहां पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुमले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहां वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो वो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4थे साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी

0: उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
0: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
1: बिल्कुल। और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा

0: छाया।
1: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए।
0: मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। हाँ। ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
1: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
0: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
1: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहां चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़े तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
0: सच में बहुत ज्यादा।
1: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
0: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो का है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
1: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
0: वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब का हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
1: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदल क्यों हो गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स

0: की है इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
1: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश हैं उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर,
0: स्वादिष्ट मिलती है,
1: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
1: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि अंतराल का समय हो जाए।
0: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: टी अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा न वा।
0: क्या बात है, क्या बात। और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना। मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है।
0: चाय के प्याले भी करवा लिए
1: जाते हैं। कब चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं।

0: बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: क्या बात है भाई,
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है।
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का मतलब एक दुशार है, उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी, सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: और हमारे देख श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
1: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
1: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जुड़ता।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
1: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है, जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
0: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
1: हाँ।
0: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
1: हाँ।
0: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
1: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
0: हाँ।
1: उसे कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
0: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
1: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा तो ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते विराज गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी इनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते ही अंधेरा होते ही लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल

0: बहुत जरूरी होता है। तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन ले गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओं, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगे। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले डक डक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटरव्यू सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके तो कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहा है रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म के नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोल ने दिल ने सनम की सूरत आंखों में आके दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर आजकल, तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी कम पक जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, जोड़ सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये की हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धाम बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक तैयारी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविद भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रखो होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनते रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं, हमको गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है, और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी
1: हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए। कितना मजा

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला, गुजरात की
1: जटिल कला है। जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी।

0: पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादर जी अपनी पसंद का गीत।
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो दो तीन दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल हाँ आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं।

0: मोबाइल पास में और न्यूज ऑन है और चलते रहता है आपका हेलो फरवाइस का कार्यक्रम, मंचा है, गीत भी चालू हो चुका है आपका।
1: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
0: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइस सबसे फेवरेट है और शाम को जो 7 बजे आता है
1: शाम को
0: साला कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
0: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
1: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: सी जगी।
1: कैसे कहूँ क्या आग लगी,
0: कोयल सी तेरी बोली।
2: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार,
3: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
2: अच्छा,
3: महाराष्ट्र आमची मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
2: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
3: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बम्बे में ही था जी।
2: अच्छा अच्छा,
3: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था।

0: मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
1: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
0: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
1: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
0: जी आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
1: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है,
0: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
1: जी जी जी,
0: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लश्मी। हाँ, हाँ जी
1: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
0: हाँ जी,
1: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार।
0: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत, मैं तो ना जी जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
1: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।
0: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, चुपचाप फूलों की डाल।
1: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मतवाली।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था ऐसे में, इसके बहाने बीबीएस के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबे ग्राम सामनापर तालुका कागल चिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हालचाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। एक तीसरे साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, बाकी के सर्वो कार्यक्रम सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या का कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोशीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोशीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले काटी।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर।

जिसमें आज की बात विषय रहेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और जल का समझे मोल, बूंद बूंद है अनमोल, और साथ ही सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 5:30 पर

कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर यानी शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

शाम 5:30 पर जयपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बाता, शाम 6:00 विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, शाम 6:30 का समय रोजाना की तरह हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी जयपुर केंद्र से और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, शाम 7:00 किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, रात 9:00 विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, रात 10:00 फिल्म संगीत, 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओं, ये तथ्य जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल के प्रातकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, प्रातः 5:53 पर रेडियो तरंगों के जरिए आपसे मुलाकात होगी। प्रातः 6:30 पर स्थानीय स्टूडियो से आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 6:45 पर खेती निपात। आदिवासी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 6:50 पर। 7:20 पर वातायन।

उत्कोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। कल का विषय है मौन। आठ बजकर 45 मिनट पर राजस्थानी लोक संगीत। प्रातः 9:10 पर सुगम संगीत। दोबारा सुगम संगीत का आनंद लेंगे 11:00। 9:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 पर फिल्म संगीत। दोपहर 12:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

कल के सायंकालीन सभा के कार्यक्रम शाम 5:05 पर कार्यक्रम नारी लोक, शाम 7 बजे किसान श्रोताओं की चौपाल, रात 10 बजे फिल्म संगीत।

और आम जनता को आतंकवाद, हिंसा और कट्टरवाद के खतरनाक प्रभाव के प्रति जागरूक करना है। साथ ही यह दिन शांति, मानवता, एकता और सद्भाव का संदेश देता है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के एक चुनावी रैली के दौरान एक आतंकवादी हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने और देश से आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लेने के लिए सरकार ने इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई जाती है। इस दिन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, आतंकवाद के खतरों, देश की अखंडता और युवाओं को भटकाव से बचाने के लिए विभिन्न सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और रैलियां आयोजित की जाती है। दोस्तों, हम हमारी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, उससे पहले हम आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत और संदेश।

युववाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अंजलि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर वर्ष 21 मई यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में। दोस्तों, चाय यानी कि लोगों की खुराक, लोगों ने चाय को अपनी खुराक मान ली है। जैसे कि सर दर्द हो रहा है, चाय पी लेते हैं। थकान लग रही है, चाय पी लेते हैं। परिवार इकट्ठा हुआ है, चाय बना दी जाए। ऐसे ही सभी का एक है चाय। दोस्तों, राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चीनी विद्वान चेन एटियन इसके

सबसे पहले प्रवर्तक और प्रमोटर थे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य विश्व भर में चाय के लंबे इतिहास और इसके गहन सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस का लक्ष्य चाय के सतत उत्पादन और उपभोग के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने हेतु सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है और भूख एवं गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, चाय का सेवन तनाव कम करने में और संज्ञात्मक कार्य में सुधार सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा है। यह दिन इन लाभों को उजागर करता है कि चाय को मानसिक कल्याण के लिए एक प्राकृतिक सहायक के रूप में बढ़ावा देना है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में नई दिल्ली में मनाया गया था, जिसके बाद 2006 और 8 में श्रीलंका में भी समारोह आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस समारोह और संबंधित वैश्विक चाय सम्मेलन ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए हैं। चाय पर FOIGG विश्व चाय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों का नेतृत्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की घोषणा का प्रबल समर्थक रहा है। 2015 में इटली के मिलान में एक बैठक के दौरान चाय पर IGG ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चर्चा की। इस प्रस्ताव को बाद में कमोडिटी प्रॉब्लम पर FO समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और फिर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया। दोस्तों, हम हमारी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, उससे पहले सुनते हैं यह प्यारा सा गीत और संदेश।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों अब बात करेंगे जल का, समझे मोल, बूंद बूंद है अनमोल। दोस्तों हम सभी ने यह कहावत तो सुनी ही कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन का मुख्य आधार है और इसकी एक एक बूंद बेहद कीमती है। आज के समय में जब जल संकट बढ़ रहा है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम पानी की हर बूंद को बचाएं। सबसे पहले हम घर से ही शुरुआत करेंगे कि हमारे घर के सभी नल पाइपों में होने वाले रिसाव को तुरंत ही ठीक करवाएं।

बर्तन धोते समय, नहाते समय नल को खुला न छोड़ें। बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। शावर का कम से कम उपयोग करें। बारिश के पानी को व्यर्थ न जाने दें। इसे छतों और गड्ढों के माध्यम से इकट्ठा करें करके भूमिगत जल स्तर को बढ़ाएं। पौधों को पानी देने के लिए पाइप की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करें। पानी बचाने की इन साधारण आदतों को अपनाकर हम अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को संचित कर सकते हैं। जल संरक्षण के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में अपना। दोस्तों, आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन चलते चलते सुनवाते ही आपको यह प्यारा सा गीत।

दोस्तों आपसे बातें तो बहुत सारी करनी थी लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। इसी के साथ इजाजत दीजिए आपकी दोस्त अंजलि को कार्यक्रम निर्माणी समाप्त करने की। नमस्कार।

0: सुनते थे कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। नीचे सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम ढीणेरी बाता।
1: कार्यक्रम युवाणी, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब सुनिए कार्यक्रम ढीणेरी बाता।
2: ढीणेरी बातें।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे जी बात
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं आज मुन्ना उतार किया बैठा हो
2: काय करूं तो अभी बेटा भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और भी रो चीसोरो भी कौन
1: बस इतनी सी बात आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबरी समस्या का समाधान
3: इस कार्यक्रम की प्राइवेट है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर
4: धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखो भाई और
5: साथ साथ बंशी भाई रा भी
4: मोकला मोकला राम राम बंशी भाई
5: राम राम हरखो भाई राम राम
4: और राम राम सगला महाराज जी का भाई सुनन वाला है और महाराज सामने जी का चौपाल में बैठा है सगला भाई ने भी राम राम सा और देखो सा गर्मी है बात तो देखो
5: जही चेत की है भाई
4: हाँ और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहे और अपन आज का बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहे है कि हरा जी का वृक्ष है भी कटन सु भी और तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमाइने तापमान तेज हो गया तो क्यों ना आप भैया एक एक पेड़ लगा आप
5: बहुत ही अच्छा विचार है वो
4: है नी हाँ देखो अब टाबरिया कह के सोशल मीडिया पर से इंगला समाचार भी आ रहे कि जे हम की बिरखा वे नी तो एक एक दो दो पेड़ आप लगावा हर मान को जो एक एक दो दो पेड़ लगाए नी तो देखो राजस्थान है नी वो हरो भरो हो जासी और आज की तापमान की समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वह थोड़ा कम भुगत सी
5: सची बात क्यों कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे
4: बिल्कुल
5: है नी तो फिर तो ये पेड़ जो जो महत्व आप सोचा नहीं तो कितो बढ़ जावे
4: बिल्कुल सर जिका पेड़ आप महित लगाया है वी आर कहन के लाभ आपने मिल रही है और आप अगर लगा सा पीढ़ी ने मिल सी है नी तो ये वास्ते आप निस्वार्थ हो उपरार वो काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आप भी भलो है तो पेड़ तो आपने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं ऐसा के
5: पूरा खासो ध्यान भी रखना है
4: कि पेड़ लगाया एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है नहीं सा लगाया नहीं भी रही पूरी जिम्मेदारी भी आप नहीं उठावनी है जब आप जिम्मेदार बन सा नहीं जब ये देखो वो पेड़ है नी वो पूरा पनप सी
5: भाई आज रोज वो पेड़ है लगाएड़ो वो आपने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी
4: बिल्कुल जीवन देसी सा और साथ साथ देखो तापमान जो बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना अवश्य घर से निकलिया ना और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढककर ही आपने निकलना है
5: यार खूब भाई
4: हाँ छोटो सा काम है कि आप आपरो ध्यान रखा सा देखो चौपाल में बैठा जेना आप अथई तो करेंगे हाँ पर चौपाल में आप विशेषज्ञ भी पधारे तो देखो आज बात कर ला आप भेड़ व बकरियां की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम हाँ तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन डॉक्टर मनोहर जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने भी करा
6: राम राम सा
7: राम राम सा राम राम सा
5: सब पहले डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक है उन्होंने आप बताओ कि भेड़ और बकरियां होड़ वाला प्रमुख रोग है किसे किसा है
7: हरको भाई या बंसी भाई भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है पशु मर जाता है तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग एक होता है गलगोटू रोग खुर गलन रोग है एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं चेचक रोग है खुरपका मुंहपका रोग है ब्लू टंग रोग है ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है
4: तो सेहूं पहले डॉक्टर साहब हमें बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपकी भेड़ और बकरियां ने इनसु किया बचावे
7: हरकू भाई और बंसी भाई ये भेड़ बकरियों में जीवाणु से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु से होता है यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नले में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है यह वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर जहर स्रावित करता है उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु

0: पैदा खा लेता है, या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है, प्रोटीन युक्त घास उगती है, उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले अचानक से पशु को आफरा आता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पशु के मांसपेशी में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
1: जी,
0: और अचानक से हरे हरे धस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने उनका ध्यान रखें, और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए। साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है।
1: जी सर, छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कई होया करे, कई मतलब है भेड़ बकरियां में भी रोग होया करे क्या, और जे हुए तो पशुपालक आप पशुआ ने इन रोग से किया बचा सके?
0: बंसी भाई, जैसे पड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है, वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है।
1: अच्छा।
0: यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे पशु तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है, जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया, या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया, या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ, या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, तो ये जीवाणु जो श्वास में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है, और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर-घर की आवाज आती है, इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सीय उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है, तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इन रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ हैं उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
2: केवल मतलब वही अर्खू भाई की साफ सफाई की सावधानी और टीकाकरण की सजगता जरूरी बात है।
1: बिल्कुल सर, गलघोंटू के बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि ब्रुसेलोसिस रोग क्या फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस रोग के प्रति।
0: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है, यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है, और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में, जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने, उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तथा जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है, और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा, उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं, और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है, और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़े जो बकरियां होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इसे भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको अपने हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धोकर के फिर दूसरे काम करने चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: डॉक्टर साहब, बकरियां और प्लेग और पीपीआर रोग कई भी करे, इनसे बचाव रहा उपाय भी आप महाराज का पशुपालक भाई हैं उन्होंने बताओ सर।
0: पीपीआर रोग एक जीवाणु से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे, मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं, तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है, और नाक से गाढ़ा स्राव आता है, वो स्राव पपड़ी के रूप में जम जाता है तो पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं।

0: तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सक इलाज करवाना चाहिए, और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े पशु हैं उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है, तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं। क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है, इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं, तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
1: केवल मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से वो पहली रखनी जरूरी है।
2: बिल्कुल सा, और अब जो को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल सा, जरूरत है गीतड़।
2: बिल्कुल, तो आपसे सुन सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: आभार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूरिया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीमेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीनेरी बातिया। और आज चौपाल में जानकर दिवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर

0: करण सैन और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरिया की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम।
1: हरकू भाई जिज्ञासा जी की इन बात जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो सर जिज्ञासा ने बढ़ावन सारू डॉक्टर साहब सो आगलो सवाल मैं कर रहे हैं खुरपका मुंहपका रोग किया फैले और पशुपालक इन रोग सो पशुआ ने किन भात बचा सके।
2: खुरपका और मुंहपका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है मुंह पे खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो फिर अगर खतरनाक होने पर घाव का रूप में ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां और भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा साल में दो बार इस रोग के टीके लगते हैं एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम जिसमें साल में दो दो बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और ये भी ध्यान रखिए जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवें। एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे ये विशेष ध्यान रखे नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।
0: बिल्कुल सर। और मक्खियां जद ही बैठ सी जद बाड़े रहे मैंने गंदगी हुए साफ सफाई नहीं हुए साफ सफाई नहीं हुए जने देखो कीट पतंगा जी कहने बहुत फैलिया करे और यह पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ में डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा हाँ कि भेड़ बकरिया में संक्रामक रोग सुखियां बच सका हाँ और इन्हें बाबत पशुपालक ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
2: संक्रामक रोग काफी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है गलगोटू रोग होता है तो इनके टीके लगते हैं वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए जिससे रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दी में होते हैं जैसे चेचक रोग बताया मैंने PPR रोग बताया FMD बताया खुरपका मुंहपका है तो ये जो सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई अगर रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। और अन्य फार्म से जो खरीद कर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं उनको सीधा अपने पशुओं के साथ पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है मिलाना नहीं है। उनको अलग से रखें एक महीने तक उनकी निगरानी करें और जब एक महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपने आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
1: सौ बात रही एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
0: बिल्कुल
1: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई रे साथ साथ है टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराजा का पशुपालक भाई है उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
2: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है। बचाव का मतलब यह है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
1: अच्छा।
2: दूसरा टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
2: टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा टीकों का रखरखाव हमेशा ठंडे तापमान 2 से 8 डिग्री पर ही

0: करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप लगाएं और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर हो जाता है तो करवाना चाहिए।
1: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगाना चाहिए, और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो साहब दो चार दिन ऊपर हो जाओ तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
2: टीको लगवाना है,
1: जरूरी है।
2: बिल्कुल साहब, और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो, और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल है।
0: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ, और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
2: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब थारो मन उसी के हूँ भी सुनना चाहूँ।
1: हाँ, बिल्कुल बताओ
2: तो आपने और आप जितना भी श्रोता है, हमारा पशुपालक भाई है, बीएनबी में मेरा जगह अंश है, मैं सुनाना चाहूँ तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
3: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था तब वो अकल्पनीय लगता था, उससे पहले शायद एक या दो विश्वविद्यालय ही पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविश्वविद्यालय के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे, और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था, और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फॉर्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की जरूरत है फार्म्स पे। हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही, और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी, तो ICR का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापिस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापिस आया प्रोजेक्ट। एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है, और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए। कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं NLM में, और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें, और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर कंटिजेंसी में हमें काफी फायदा हो जाएगा, और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय की जो टीम है उसने जो LST पे सर्वे करके जो रिजल्ट दिया, मेरे को भी लगता था कि ठीक है हम लोगों ने काम किया और अब भेज दिया और कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहां से सुनने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड उसकी जो परमिशन थी LSD वैक्सीन की उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का उस जो उसमें काफी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों

0: उन्होंने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की LSD वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। ये एक विश्वविद्यालय को, हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नजरों में है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को टॉफल GRE क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडा ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां, प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना AC के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो। इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
1: वाह भाई अरखो भाई, देखो सा सुमंत व्यास जी रे का उद्बोधन सुना नी, ये लागे कि भाई देखो सा जन जन से जरूरी बातें बता रिया था।
2: बिल्कुल सर, अब देखो सा वक्त इशारों करण लाग गया है
1: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका। समय की कदर सगला ने करनी चाहिए,
2: करनी चाहिए। तो मैं आपने बता दू सा, आज चौपाल रे मायने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधार्या सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन और आज आप बातचीत करी भेड़ और बकरिया की प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम विषय पर। डॉक्टर मनोहर सेन साहब, आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालकों ने इतनी बढ़िया महत्व जानकारी दी, इन सारे मैं देवा आपने धन्यवाद और करा
1: राम राम, राम सा राम राम सा।
2: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेनेरी बातिया। कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी सा छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
5: कहीं करूँ तो अभी बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दिया और बीरो जीसोर भी कौन।
4: आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी होड़ी सबड़ी समस्या का समाधान।
6: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम प्रायोजित कार्यक्रम धीमेरी बाता। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं और आपसे बस थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार। सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार निवेश आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयास

0: में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती और अब लीजिए तराने नए पुराने की अगली पेशकश।

एरी पवन। ये गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आरडी बर्मन का संगीत था। तराने नए पुराने में ये अगली पेशकश। फिल्म न्यूयॉर्क, सुनिधि चौहान की आवाज में। संदीप श्रीवास्तव ने इसे लिखा, प्रीतम का म्यूजिक।

प्रोग्राम तराने नए पुराने में हम ये गीत लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।

तू अब चाहेंगे कि तुमको भाई बट्टू और भाई बट्टू।

0: पड़ोसन फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और ठीक उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से दो दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न

0: इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जिन आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। तो संवैधानिक बाध्यता के तहत तब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
0: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राजपक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टि बाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादव माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों, छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में RUB बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलख जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शेड के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर

0: प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा शुरू कर धरेला, राज्य ने नई रेलां री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानों काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागर जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी ची। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वह काल सवार जोधपुर माए न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबरनवीस री रपट।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार जोधपुर।
1: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है। वठे वह भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आगाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वहती निकलेला। पाछे श्री वैष्णव पाली माए अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामा रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थवर ने जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माए नवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। ई पाछे वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तेत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकार सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल होने वाला सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हल्का माए खुद रे पान उबो वेवन ने सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं रा चुनाव सारू वार्डा रा पुनर्गठन और वोटर लिस्टा तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वह कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रिची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो कि सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपट रा आधारों राजनीतिक आरक्षण दियो जावेला।
3: हमारी सरकार ने अनेक बार आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। बस संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब

0: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला में खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा में सिलिकोसिस री बीमारी हरमारा इलाज सारू जरूरी सुविधा री कमी माथे खुद संज्ञान लीनो है। आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर और गैर कानूनी तरीकाओं खुदाई रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलकां दी भौतिक जांच करा और मजूरा ने हिफाजत तों जुड़िया साजो सामान मुहैया कराउन नु तय करा और सिलिकोसिस रा मरीजां रा इलाज सारू हर महीना खास शिविर लगावन बाबत ही कहो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा साल 2025 बैच रा सिखावन ले रिया अहलकार आज जयपुर रा लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुलाकात कीनी। ई मौके राज्यपाल आ अहलकाराओं जनता रा प्रति संवेदनशील भैर काम करन सारू कहो। श्री बागड़े जनताओं जुड़िया मुद्दा माथे खास ध्यान देवन री राय दीनी। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जावन वाली विकास री योजनावां ने असरदार तरीकाओं लागू करन माथे जोर दीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में पड़ रहा जबरदस्त तावड़ा सागे उन्नो बायरो बाजनो मिनखा जिनावरा और परिंदा रा हाल बेहाल है। बाड़मेर में आखा दिन आंधी चालनो परेशानी रो सामो करनो पड़ियो। राज्य में लारला 24 घंटा में सबू बत्तो तापमान श्री गंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। वठा तेज गर्मी ने ध्यान रखता थका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर जनताओं एहतियात राखन री अपील करी ची है। फलौदी माए 44.8 और अलवर और पिलानी माए 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए मौसम साफ रहेला। हालांकि काल राज्य रा उत्तराध आतुनी हलका माए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार आंधी चालन रा आसार है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहो है कि जनता री भिड़ी कोशिशां और गोडावण प्रजनन केंद्रां रे जरिए राज्य पक्षी गोडावण री तादाद माए लगातार बढ़ोतरी फे रही है। वे आज जैसलमेर माए राखी जिया राज्य रा पहला गोडावण दिवस कार्यक्रम माए बोल रहा है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावन पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावन पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावन उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावन की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावन पक्षी और वन विभाग देने का।
0: ई मौके वन मंत्री गोडावण दी मूरत रो अनावरण कीनो और पर्यावरण ने बचावन रे बारा माए स्कूलां माए राखी जी होना जीतण वाला रो मान कीनो। ई पाछे वे समरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क रा सुदासरी हलका रो दौरो कीनो। श्री शर्मा वठे अहलकाराओं गोडावण ने बचावन सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी लीनी। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए 23 जुलाई 2 अगस्त ताईं होण वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 माए शिरकत करण सारू भारत रा खिलाड़ियां रा नाम रो ऐलान करत्यो चियो है। आमाए कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी शामिल है। वा 70 किलोग्राम भार वर्ग माए भारत री ओर रिंग माए उतरेला। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए शामिल होण वाली राजस्थान री पहली महिला मुक्केबाज वेला। वे बॉक्सिंग विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में आई तमगा जीत और देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अरुंधति ने सोशल मीडिया संदेश रे जरिए बधाई देता थका कहो कि हमारी आ उपलब्धि नौजवाना सारू सीख देवन वाली है। अरुंधति फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई रा पटियाला केंद्र में सिखावन ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओर दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल सरू फैला। जयपुर रा कल्याण संघ परिसर माए फेवन वाली 3 दिन री ई होड़ माए दृष्टि बाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आ होड़ वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग माए

0: जयपुर रा बिचून औद्योगिक हल्का में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायू चावेला श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर में खबर नवी संसागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी वह कहो कि यू माटी कलाकार सारू नवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला श्री टांक कहो कि राज्य में माटी कला रा सगला कलाकार और कामगार रा आर्टिजन कार्ड बनावन सारू बोर्ड रिओर शिविर लगाया चावेला वे बतायो कि प्रदेश में बिजली चालन वाला 5000 चाक और मिट्टी गूंदवारी मशीन दी चावेला इस आगे मौजूदा साल में माटी कला रा 100 प्रशिक्षक तैयार करावन भी तय करी चियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया रिओर आज जयपुर में बिल्ड विद एआई कार्यशाला रखी जी इनमें नुआ एआई टूल्स री सिखावण दी रही जी ई मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवा मा और जनता रा भलारी योजना मारी पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो ई मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य और जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3 लाख लोगों ने फायदो मिल चुकी है आ पीढ़ी दर पीढ़ी भेवन वाली बीमारियां आगे करण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है इना तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माई जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित कराया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो नंबर जो सुन ली रहो सा 1800117800 आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला राज्य ने नुवी रेला ने सौगात देवेला प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी ची इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो पण आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हमारा हमारा सब भाइयों बहनों ने स्वराथी की रिता बहनों राम राम राम राम भाइयों बहनों आ स्वरा कार्यक्रम है। स्वरा ऊपर आपने खेती बाड़ी थी जुड़ेली घनी बातें करो तो आज आप स्वरा ऊपर चर्चा करूंगा। नवा बगीचा लगाड़ो तो एने पहले आपने हूँ तैयारी कर रखो पूर्व तैयारी ने बारे में इन बात आप चर्चा करूंगा। खरीफ फसल तैयारी ने व्यवस्था ने बारे में एने हाथे हाथी आज बे महत्वपूर्ण दाड़ा है। एक तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है बीजू अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस है। तो आना बे दिवस ने बारे में आप चर्चा करूंगा। हाथे हाथे पशुपालन ने बारे में आप आज हरिभा मौजूद है आप हाथी बात।

0: चयन। पौधों का चयन बोले अपने नर्सरी थी कि स्वस्थ रोग मुक्त चयन या ग्राफ्टेड कलम लावी मिल जुए जे भी अपने फलदार वृक्ष लगा चाह आराम समय अपने आम है अमरूद है सीताफल है कोई भी अपने वृक्ष फलदार अगर लगाड़ू चाह मानसून पूर्व तो एनी अपने तैयारी कर रखी जुए। बीजू अपने स्थान चयन करो भी खूब महत्वपूर्ण है कि एवं स्थान चयन करो है जैसे दाणा में कम से कम 6 घंटा सीधी धूप आप बीजू है एवं स्थान अपने चयन करो। बीजू भी ध्यान रखो कि जे भी जगह हो इनमें जल निकासी अच्छी हो, एक तो अच्छी नमीयुक्त जगह हो, बीजू जल निकासी अच्छी हो, पानी भराई नहीं रहे तो कोई ध्यान रखो खूब जरूरी है। बीजू अपने तैयारी में करो गड्ढा खोदी रखो तो रोपण थी 30 दाड़ा पहले अपने 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा खोदी रखवा है। इन बाद एना गड्ढा ने 1-2 सप्ताह बल्ले खुलू छोड़ दे हुए ताकि इनमें अच्छी धूप मिले ने धूप थी कि एना जगह ऊपर जे भी दीमक हो कीट हो कीड़ा मकोड़ा जे भी हो ये चीजें नष्ट थी जाए, दीमक ना घर हो तो भी नष्ट थी जा ने गड्ढा में अच्छी धूप जाएगा तो गड्ढो अच्छो साफ थी जाएगा स्वस्थ थी जाएगा। इन बार ध्यान रखो है कि अपने मिट्टी में तैयारी ना कि उपजाऊ मिट्टी में 20-25 किलो सड़ी गोबर की खाद अपने मना भी रखी है इन्हें हाथी वर्मी कंपोस्ट मना रखू इन्हें हाथे हाथी 50 ग्राम क्लोर पाइरिफॉस से दीमक थी बचाव वाली दवाई है ये भी अपने मना रखी है। मतलब ये ध्यान रखो कि मिट्टी खाद वर्मी कंपोस्ट दीमक थी बचाव वाली जो दवाई है इन्हें मना भी एक मिश्रण तैयार कर अपने रखू है। पसे आ मिश्रण ने गड्ढे में धरातल थी 2-3 इंच ऊपर उधी भरी पसे पानी नाखी नीणों पर मिट्टी भरी नीणों पर पानी नाखी दबावी पसे तैयार कर गड्ढा तैयार कर दीवा। अभी अपने ध्यान रखो कि जेवी रोपण ना समय आए अपने मानसून हफ्ता में अपने रोपण करो या फिर जेवी भी समय आए जेवी अपने कलम लगाड़ी हो या नर्सरी थी किसी स्वस्थ पौधों लाने अपने मिली हो लगाड़ू हो ती सही समय आबा ऊपर ही कलम लगाड़ दी हुए कलम लगाड़े तभी भी ध्यान रखो है कि ग्राफ्टिंग है इन्हें जोड़ है जमीन की सतह थी कम से कम 10-15 सेंटीमीटर ही ऊपर रहे बजू है तो आई तरह थी अपने कलम रोपण कर दूंगा आनी तरह थी अच्छी तैयारी कर रखूंगा तो आप समय ऊपर फलदार वृक्ष लगाड़ी सकूंगा ने आ वृक्ष ही पास अच्छी विधि का मानसून पानी मिलेगा एक अच्छी अनुकूल वातावरण मिलेगा तो आप पौधा है ये अच्छी तरह थी स्वस्थ रूप थी बढ़ेगा ने आप 2-3 साल में अच्छो वृक्ष ही तैयार थी जाएगा। तो आने सीजन में ध्यान रखी ने अपने नवो फलदार बगीचा लगाड़वानी पूर्व तैयारी कर दी है। बीजू अपने हाथे हाथ ये भी ध्यान रखू है कि जब छोटू पौधो रहे तब भी इन्हें सहारा की जरूरत रहे तो सहारा आलवा बोले एक खोटी बिगाड़ी रख रही है ने प्रारंभिक डाला में पौधे में खूब धूप नहीं मनाए नहीं व्यवस्था कर रही है कि छाया नहीं व्यवस्था कर रखी है ताकि सीधी धूप थी कि प्रारंभिक अवस्था में पौधों मुरझाए नहीं जा तो आ कुछ चीजें मैं अपने ध्यान रखूंगा तो अपने अच्छी तरह थी नवो बगीचो तैयार कर सकूंगा ना बगीचा में जो वृक्ष थाएंगा ये भी काफी अच्छा थाएंगा तो आ सब ध्यान रखो। इन्हें हाथे हाथे हमें अपने गर्मी ना मौसम है आड़ा मौसम में अपने पशुधन है तो एने पशुधन ने रखा बदले अपने खूब ध्यान रखव पड़े खूब सावधानी बरतवी पड़े तो आ विषय पर अपने सोरा पर आज हरिभाई ही अपने हाथी तो एना थी बातचीत करो कि अपने आड़ा मौसम में पशुपालन हती करो एने हाथे हाथे आ कुछ संदेश भी हमरो पास अपने आगे बात करो।
1: हरिभाई खेती बाड़ी थी जुड़ी लाए प्रगतिशील किसान है ने हाथे हाथे पशुपालन भी करे तो आज आप हरिभाई थी बातचीत करो ने पशुपालन ने बारे में चर्चा करो कि पशु ने देखभाल हती करे हूँ आहार ले। नमस्कार हरिभाई।
2: हाँ नमस्कार।
1: हरिभाई आप खेती बाड़ी भी करो हाथे हाथे पशुपालन नो कार्य भी करो हो तो मैंने ये बताओ कि आप जो पशुपालन करो
2: पशुपालन बचपन थकी पशु ने कने ने खास करीने गाय ने कने श्रेय ने आना समय में पशु ने मारे 65 साल की उम्र में मैं स्वयं पशु ने देखभाल करू।
1: अच्छा तो खूब अच्छी बात है तो आनो आपने स्वास्थ्य ऊपर हो प्रभाव है।
2: हाँ ये मारे खास कहू ये है कि खास कर पशुओं ने कने रहवा थकी मनुष्य तनाव थकी मुक्त रहे ने स्वयं यदि पशु ने देखभाल करे तो ई व्यक्ति खुद भी स्वस्थ रहे ने एना पशु भी स्वस्थ रहे।
1: अच्छा तो मतलब
2: तो मारो खास अनुभव है ने आना गर्मी ना टाइम में पशु

0: फसल खूब खराब था तो जरूर ने अगर आपने खेतर में जैविक खाद उपयोग करो अच्छी प्रकार नो बीज नो उपयोग करूंगा तो आपने फसल अच्छी था गा आपने खेतर में मिट्टी उपजाऊ था गा इन हाथे हाथे आपने पर्यावरण है ये भी संरक्षित रहेगा जो फसल है जो उपज आपने प्राप्त था गा ये आपने स्वास्थ्य बोले खूब अच्छी रहेगा तो आपने खेतर में पहले थी जैविक खाद लग दी है इन हाथे ये भी ध्यान रखू है कि खेतर में मेड़ बद्दी कर रखी जो है खेतर में मेड़े मजबूत हो ऊंची हो तो बारिश में पानी है ये खेतर में अच्छी तरह से जमा थी जाएगा विशेषकर अपने धान की फसल करो तो धान की फसल बोले बारिश में पानी है इकट्ठो थो खूब जरूरी है तो मेड़ बद्दी है अपने हमने थी कर रखी जो है अगर आगे बात अपने बीजों नहीं तो बीजों नो चयन बीजो उपचार अपने पहले थी कर रखो जो है इन बदले अपने उत्तम किस्म बीजों नो चयन करव है प्रतिरोधी किस्म बीजों नो चयन कर रखूंगा तो अपनी फसल ही अच्छी था ध्यान रखू है कि बुवाई थी कि पहले बीजों फफूंदनाशक जेम के कार्बेंडाजियम या थेरम है इन्हें थी कि उपचारित करव है हाथी हाथी कीटनाशक थी कि उपचारित करव है जेम थी कि फसल की शुरुआत अवस्था में जड़ गलन दीमक के वा रोगों थी कि सुरक्षित रहेगा इन अलावा रोग प्रतिरोधक किस्म चयन करेगा तो अपने फसल में रोग नहीं लगेगा न अपने स्वस्थ फसल ही अपने प्राप्त था इन बाद अपने कृषि यंत्र तैयारी कर रखी है हाथे हाथे उर्वरक की तैयारी कर रखी है कि मिट्टी की जांच ने आधार पर अपने खेतर में क्यों खाद मिलाबू है जिनकी यूरिया है डीएपी है या फिर पोटाश है कितनी मात्रा है अपने खेतर में मतलब भी जरूरी है ये अपने में ध्यान रहेगा जे भी उर्वरक अपने अपने खेतर बल्ले अपने फसल बल्ले उपयोग करवाए इन्हें अपने पहले थी तैयार कर रखूंगा जुताई समय खेतर में मिला भी देंगे तो अपने फसल भी अच्छी था हाथे हाथे बीज है खाद है इन पहले थी कि अपने भंडारण कर रखू है क्योंकि एन वक्त पर अपने लेवा जाऊंगा तो थी सके बजार में अपने उपलब्ध नहीं हो अपने फसल है अपने बीज बोवा में देरी थी जा तो हमने सब दातनी व्यवस्था कर रखी है इन हाथी बुवाई बल्ले जो भी यंत्र जरूरत रहे जिनकी सीड ड्रिल है ट्रेक्टर है या बीजे उपकरण है इन्हें भी व्यवस्था कर रखी है हाथे हाथे उपकरण में मरम्मत कर तैयार रखूंगा तो मानसून में आता में अपने खेतर में बीजों की बुवाई कर सकूंगा बीजों अगर ध्यान है या प्याज नहीं अपने खेती करी रहो तो ध्यान प्याज की नर्सरी है ये भी पहले थी कि अपने तैयारी करनी है कि अपने जून ने पहला पखवाड़ा में नर्सरी यानी कि बीचड़ो है तैयार कर रखू है ने मानसून आता में अपने बुवाई कर सकूंगा खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था कर दी है कि खेतर में घास है या फिर खरपतवार है ई उगी ली हो तो इन्हें भी साफ कर दी है इन बाद बुवाई बाद तुरंत इनमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड नाकी दी जो जिंदगी खरपतवार है या बार बार नहीं हुए तो होने सब बात ने अपने पहले ही तैयारी कर रखूंगा तो मानसून आता मैं अपने खरीफ की फसल की बुवाई कर सकूंगा तो आ जे भी जानकारी अपने अपने बात करी इन सब जानकारी पूर्व तैयारी करूंगा समय पर अपने बुवाई था अपनी उपज ही समय पर प्राप्त था अवे सोरा ऊपर हाज नो समय थी गयो ने हाज नो समय है अटले भाई बहन नो भी विचार था के कई अच्छू गीत संगीत सांभळी लो जेनथी के अपने दाड़ा भर नी थकान दूर थी जा तो आ सोरा ऊपर कुछ संदेश ही ए भी हमरा हाथी हाथी आ गीत हमरो पसे अपने आगळ नी वात करो
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
2: मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
3: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
3: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
3: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका घर
4: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

हाँ समय है ने आना समय में आटलो बढ़िया आप भजन हमरी मुखड़ा क्या देखे दर्पण में ने भजन हमरी में आपने ने आनंद आ गयो ने आंतिक पहले आपने खरीफ फसल पूर्व तैयारी में बात करी है हवे आज बे महत्वपूर्ण दाड़ा इन बारे में चर्चा करो आज एक तो आतंकवाद विरोधी दिवस है ने आ दिवस में नंबर उद्देश्य है कि आपने सभ्य समाज में कई प्रकार की हिंसा या आतंकवाद की जगह नहीं तो लोगों में जागरूकता बढ़ावा कि आतंकवाद में आपने जीवन में कोई जगह नहीं अपने तरक्की मार्ग के ऊपर सालों पड़े आतंकवाद थी कि लोगों में जागरूकता बढ़ा था इन बल्ले आ दिवस मनाव विरोध

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। लीजिए सुनिए जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

0: आर जयपुर सु आप पधार्या रित्ती घणी महती जानकारी पशु नस्ल सुधार आप आकिन भांति कर सका छा। ई पे आप विस्तार सु सरल शब्दा में जानकारी दी, इनके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
1: अरे देखो सा, धन्यवाद आप अभी देवा अदिति जी ने और मां का विषय विशेषज्ञ ने। और जब गीत की बात थी तो देखो, आज तो समय को थोड़ा सा अभाव छे, फिर आगे आपने गीत जरूर सुना होना। और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे ग्राम भारती को टाइम पूरो हो तो जा रहे छे, तो दिराव आगे आशा ने
0: और अदिति ने
1: चालान करा। राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम भारती। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 7:31 हो चुके हैं और आप सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगला श्रोतावा ने आशा था भाई का घना घना राम राम और अदिति जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा
1: राम राम आशा बहन और सुनवाड़ा सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरे नमस्कार और राम राम सा।
0: अब देखो सर रामा श्यामा के साथ ही आज छे गुरुवार और गुरुवार के दिन आपा कराचा फोन इन कार्यक्रम जी का मायने आपना जी का सुनवाड़ा छे कार्यक्रम श्रोता वे फोन कर सके छे और खेती बाड़ी से जुड़े वहाँ की जो भी समस्या छे वहाँ को समाधान विश्व विशेषज्ञ जो स्टूडियो में पधारे छे वहाँ से स्वयं बात कर आपकी समस्या बता वहाँ

0: समाधान पा सके छे। और बात करवा के लिए अपने स्टूडियो की चार फोन लाइना छे जो आप हमारे लिए खोल रखा छे, जी पा आप फोन कर सको छो और सीधा बात कर आपकी समस्याओं को समाधान पा सको छो। आज भी आपकी समस्याओं को समाधान करवा के लिए, आपका सवाल को जवाब देवा के लिए विषय विशेषज्ञ पधार चुके छे। तो अदिति जी, सबसे पहले तो ओरखाण वाकी करा दो।
1: जी सर, आपने बीच में देवीलाल कुमावत, आप उप निदेशक कृषि एवं सीनियर फैकल्टी आत्मा जयपुर सुआ पधारिया, आपको घणो घणो स्वागत। राम राम सर।
2: राम राम सर।
0: और देखो सर, जी की चार लाइना छे तो अब फोन नंबर मैं सुन वाला श्रोता ने बता दू छू। स्टूडियो की चार लाइना छे 2200600, 2200700, 2200800 और 2366477। और जयपुर से बारह का जो श्रोता है या जो श्रोता मोबाइल से फोन कर रहा है, वे जयपुर को जो एसटीडी कोड है 0141 उन्हें जरूर लगा लो और लगा फिर बात करो, ताकि सुविधा से तो आपको फोन लगे और आपने आपकी समस्या को समाधान और सवाल को जवाब मिल सके। हमेशा की तरह ही आज भी कहो चावला कि जो भी श्रोता फोन करे, वे सबसे पहले तो आपको नाम बतावे, आपकी जगह को नाम बतावे और फिर बात करे। जब भी आप फोन करो तो थोड़ी सी ई बात को भी आप ध्यान रखो सा कि रेडियो सेट से थोड़ी सी दूरी बनाकर बात करो, ताकि जो भी आप पूछो, जो भी आप मैं बताओ, वो अच्छे से समझ में आवे। और स्पीकर पे फोन न कर बात मत कर जो, क्योंकि स्पीकर पे जब आप बात करो जो तो ठीक से समझ में को ना आवे, और जब समस्या ही समझ में को ना आवे तो विशेषज्ञ जवाब किया दे वाला। और सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े जो सवाल छे वे ही आप इमें पूछोला तो ज्यादा बढ़िया रहे वालों, क्योंकि दूसरा जो सवाल हुए छे वहां को जवाब दे वो थोड़ो सो मुश्किल हुए छे। और जी विषय के लिए कार्यक्रम छे क्यों ना आप उसे ही जुड़ा सवाल पूछा। और देखो इतनी सारी बातें करते हैं, फोन लाइन पर भी श्रोता जुड़ चुका है, बात करा छा। राम राम साहब।
3: राम राम।
0: खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, नाम बताओ आपको।
3: मोहसर धर्म सिंह बोल रहा हूँ मैं, बोता शहीद जिला रेवाड़ी हरियाणा से।
0: जी धर्म सिंह जी, खूब खूब स्वागत। आज का ही पूछना चाह रहे छो?
3: आशा जी, अनीता जी और अपने देवीलाल जी और श्रोताओं को सबको मेरा नमस्कार।
0: आज अनीता जी की जगह अदिति जी साथ आया छे।
3: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं होती।
1: जी सर, आपने कई परेशानी आ रही, पूछो सर।
3: परेशानी नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा था कि धान की ये जो बिजाई होती है ये है DSR।
0: जी।
3: तो देवीलाल जी से मैं पूछ रहा हूँ कि ये DSR में क्या होता है, ये कैसे करें हम?
2: धान की बिजाई आपको करनी है तो धान के लिए कास्तकार भाई, अभी तो थोड़ा सा समय है अपने पास में, आप जून जुलाई के अंदर इसकी जो है वो बनाए, नर्सरी बनाए, और फिर जैसे ही अपनी पौध तैयार हो जाती है तो फिर अपन पौध का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं।
3: नहीं, पौध वाली बात तो अलग है, ये DSR है, डायरेक्ट सीड होती है, सीधी बिजाई, इसके बारे में पूछ रहे हैं।
2: अच्छा, डायरेक्ट सोइंग के बारे में पूछ रहे हैं, नर्सरी नहीं करना चाह रहे हैं आप, है ना?
3: यस।
2: हाँ, तो इसमें अपन डायरेक्ट सोइंग तब करते हैं जब अपने पास में पानी की थोड़ी कमी होती है, तो उसमें डायरेक्ट सोइंग अपन करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कास्तकार भाई, सबसे पहले अपन किस्म का चुनाव करें, और फिर जब अपन को इसकी बुआई करनी है तो पहले खेत वगैरह है ना वो बिल्कुल तैयार कर लें, और जो बीज की मात्रा है इसमें, वो बीज की मात्रा थोड़ी हाई होती है, ज्यादा होती है। नर्सरी में तो अपने 35 किलो के आसपास प्रति हेक्टर के हिसाब से अपन नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट सोइंग के अंदर 80 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने को मतलब बिजाई करनी पड़ती है। और बीज को पहले मतलब डायरेक्ट सोइंग नहीं करें, बीज को पहले है जो 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक है जो उसको भिगो के रखें, जिससे उसका अंकुरण है वो अच्छा होगा।
3: जी
0: धन्यवाद।
3: दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सीधी बिजाई है, ये हमारी जो मशीनें हैं जिनमें हम बोते हैं गेहूं जो वगैरह, ये वो मशीन से बोले क्या, अलग मशीन आती है इसकी?
2: नहीं, अलग मशीन इसकी नहीं आती है, इसकी दोनों ही विधि है, या तो आप इसको ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं और इसको लाइन से लाइन में भी बुआई कर सकते हैं।
3: अच्छा,
0: धन्यवाद सदरम सिंह जी, फोन कर बताएं आपको, खूब खूब धन्यवाद।
1: देवीलाल जी, एक कसा बाहर बाना की तरफ से एक प्रश्न और आयो छे मन में, और पूछो भी चाह रही छू कि अगर

0: चारा की फसल अबार तक आपना जो भाई बहन नहीं लगाया छे, तो अब वह कौन सी फसल और किस्मत ले सके छे?
1: देखो कास्तकार भाइयों, वैसे तो जो चारे की जो आवश्यकता होती है वो हमें 12 में नहीं होती है, और इसका सही समय है वो तो फरवरी मार्च में है, लेकिन अभी आप लगा नहीं पाए हैं। तो अभी देखो, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, आपके पास में जो पानी की जो सुविधा है वो पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। अगर आपके पास में पर्याप्त पानी की सुविधा है तो आप मक्का लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, चमड़ा लगा सकते हैं। इसमें भी मुख्यतया आप जो बाजरा और ज्वार लगाएं, तो बाजरा की मैं किस्म आपको बता देता हूं, उसमें राजस्थान चरी बाजरा 1 है, राजस्थान चरी बाजरा 2 है, राजस्थान चरी बाजरा 3 है, बाजरा बालापुरी है, राजको है, इसके अलावा एक एमपी 171 या पूसा 171 आती है, इसकी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मतलब बुआई कर सकते हैं।
2: हेलो,
0: राम राम सर।
2: हाँ राम राम भाई, क्या राम राम?
0: राम राम, नाम बताओ सर, कौन सी जगह से बोल रहे हो वह बताओ।
2: दुर्गा राम
0: जी, कई पूछना चाह रहे हो आप?
2: मैं डॉक्टर साहब से बात तो आगे हाल रही है, उसमें ये पूछ रहा हूँ, इसने अभी नुकसान मक्का और बाजरा के लिए बता रहा है
0: जी?
2: उसमें किस्म कौन सी आती है वो बोल रहा हूँ।
1: बाजरा की किस्में तो मैंने अभी बताई, वो चरी बाजरा की किस्म है। आज को कौन सी वाली चाहिए?
2: मक्का और ज्वार की, मक्का और ज्वार के लिए बोल रहे हैं आप?
1: हाँ, तो मक्का में कास्तकार भाई आप लगा सकते हैं अफ्रीकन टोल नाम की किस्म आती है, बहुत बढ़िया किस्म है। और इसके अलावा आप गंगा 11 या गंगा 5 है वो लगा सकते हैं, और इसकी जो बीज दर है वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी है, और पानी है वो अपने को पर्याप्त मात्रा में देना है, क्योंकि इस समय है कि जो टेम्परेचर है वो 45, 46, 47, 48 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो पानी
2: 48
1: रह रहा है। तो कास्तकार भाई ये ध्यान रखें कि पानी की मतलब कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अपना अंकुरण अच्छा नहीं होगा, अंकुरण होने के बाद भी फसल है जो जल सकती है।
0: धन्यवाद सर। राम राम सर। हेलो,
3: हाँ सर, नमस्कार, बांसवाड़ा से बोल रहा था।
0: नमस्कार, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, कौन बोल रहे
3: हैं
0: बताओ? हाँ सर, नाम बताओ, आवाज आ रही है आपकी।
3: बांसवाड़ा रामलाल बोल रहा था सर।
0: जी रामलाल जी, कहीं पूछना चाह रहे जो आज?
3: मेरी जमीन है सर, मेरी जमीन है, उसमें पानी खूब आता है, 2 महीने पानी बहता रहता है, चावल के अलावा उसमें क्या किया जाए सर?
1: चावल के अलावा कास्तकार भाई ऐसा है कि अभी आप ज्वार लेना चाहते हैं तो ज्वार ले सकते हैं, क्योंकि आपके पानी ज्यादा है, यही है ना, आपके पानी ज्यादा है, भरा हुआ है उसमें, तो
3: हाँ, वो सब ऊपर वो है, पानी हाँ, ज्यादा आता है हाँ, तो चावल के बदले में क्या किया जाए?
1: चावल के अलावा कास्तकार भाई आप ज्वार ले सकते हैं, तो चावल के बाद में ज्वार एक ऐसी फसल है जो खड़े पानी में आराम से हो सकती है। इसके अलावा आप जैसे सिंगाड़ा वगैरह वो चीज तो ले सकते हैं, और मखाना की खेती है वो भी कर सकते हैं, कि मखाना की खेती के लिए बांसवाड़ा में अपने जो उपनिदेशक उद्यान है उनसे आप संपर्क कर लें, क्योंकि पिछली बार है कि काफी लोगों को इसका डेमोंस्ट्रेशन है वो दिया गया था, तो बांसवाड़ा में जो उपनिदेशक उद्यान है उनसे संपर्क कर लें, मखाना की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।
0: धन्यवाद सर, फोन करवाता ही घनो घनो धन्यवाद। और श्रोताओं, विषय विशेषज्ञ अपने साथ छे कार्यक्रम में, और भी आपका सवालों को जवाब देवला, अपन एक छोटा सा अंतराल के बाद।
4: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज, प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
0: एक बार सबको फिर से कार्यक्रम में स्वागत है, डॉक्टर साहब अपने साथ हैं, देवीलाल कुमावत उपनिदेशक कृषि एवं सीनियर फैकल्टी आत्मा जयपुर में आप पदस्थापित हैं, और श्रोता जुड़े से बात कर लेवा छा। राम राम सर।
2: राम राम जी, राम राम जी बहन जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: नाम बताओ आपको?
2: रामेश्वर नाम साहब, कोटपुतली बाई रोड
0: जी। कई समस्या आ रही है आपने?
2: अजय का अनार का पौधा 4-5 साल का, उसका अनार है तेरे लाल पीले नहीं होते, कच्चे दाने रह जाते हैं।
1: देखो कास्तकार भाई, ये जो सारी चीज जो डिपेंड करती है वो करती है अपनी किस्म के ऊपर, तो आप कौन सी किस्म लेके आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ एक वैरायटी तो ऐसी है जो उनके जो दाने हैं वो सफेद ही रहेंगे, कभी भी वो

0: लाल या सिंदूरी नहीं होंगे। अगर आपने जो उन्नत किस्म है जैसे अपने भगवा है जिसे अपन संदूरी भी कहते हैं, अर्ली भगवा है और सुपर भगवा है, अगर ये वेराइटीज आपने अगर लगाई है, ये किस्में इन किस्मों के पौधे लाके आपने रोपण किए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से उनका जो रंग है वो लाल होगा, भगवा होगा। बाकी ये किस्म के ऊपर डिपेंड करता है।
1: ठीक है सर, किस्म तो मैं नर्सरी में लिए
2: फोन करवा कहते हैं। आपको बड़ो बड़ो धन्यवाद सर। अब कुमावत साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अबार को जो आबारो टाइम है अब उनके अंदर अगर आप ग्वार की मूंग की मूंगफली की बुआई काश्त करवाया कर भू चावे तो कहीं सही समय चेक कर सके चे या हाल थोड़ी थावस खानी चाहिए जी।
0: देखो काश्तकार भाइयों, इस समय जैसा मैंने पहले बताया कि गर्मी है वो बहुत ज्यादा है और अगर अपन अभी इन खरीफ फसलों की बुआई भी करेंगे तो उनका अंकुरण नहीं होगा और अंकुरण होगा भी तो हो सकता है कि फसल अपनी जल जाए, तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अभी अपन है जो खेत की तैयारी कर सकते हैं और अपने आदानों की व्यवस्था कर सकते हैं और जून के महीने में जुलाई के महीने में है जो उसका उचित समय होता है उस समय अपन इनकी बुआई कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी कौन कौन सी किस्में हैं इन फसलों के अंदर वो लगा सकते हैं। अगर मूंग की फसल आप लगाना चाह रहे हैं तो मूंग में K851 है, बहुत अच्छी किस्म आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। RMG 62 है, RMG 268 है, SML 268 है, तो ये बहुत अच्छी किस्म है। इनका आप है जो आदान व्यवस्था कर लें, बीज की व्यवस्था कर लें, खाद की व्यवस्था कर लें और जैसे ही अपना टेम्परेचर है थोड़ा सा सही जाता है तो उस समय इसकी बुआई अपन कर सकते हैं। और मूंग के अलावा दूसरी फसल भी ले सकते हैं अपन, जैसे मोठ ले सकते हैं, उसमें अपने जो अच्छी किस्म है वो है RMO 40 है, RMO 225 है, RMO 435 है, तो इनका बीज है वो आप है जो खरीद के ला सकते हैं और उसके बाद में जैसे ही अपना टेम्परेचर सही होता है, जून जुलाई का महीना आता है, बारिश होती है, तो उस समय इसकी बुआई है वो कर सकते हैं।
2: जी सर। श्रोताओ सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है और आपने नंबर एक बार रोजू बताना चाह रहा है 2200700 2200700 700 2200800 2306 6477। और अब देखा कौन सा श्रोता अपने साथ जुड़िया है। जी सर, तो देवीलाल जी आपसे अगला प्रश्न याद है कि गर्मी की जुताई कई छे और कई को उचित समय छे अबार कई में कर सका छे।
0: काश्तकार भाइयों, अभी मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में क्या है कि काश्तकार के पास में थोड़ी फुर्सत होती है।
3: जी, एक श्रोता जुड़े से बात कर लेवा चाहे आगे। हाँ। सवाल पर और आपसे राय ले वाला। राम राम सा। हेलो
4: हेलो,
3: नमस्कार, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत। कौन बोल रहे छो?
4: ये जयपुर से बोल रहा हूँ, अमित
3: जी। अमित जी, का ही पूछना चाह रहे हो आज?
4: ये पूछना चाह रही केले की फसल कब होती है।
3: थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर है आप, फिर बात करो। केला की फसल कब हो बचे?
0: देखो काश्तकार भाई, केले की फसल के लिए आप पूछ रहे हैं तो इसमें दो सीजन होते हैं जिसमें अपन ये लगा सकते हैं। इसमें आप जुलाई के आसपास से बारिश से लेके और सितंबर तक है उसमें आप अपने पौधे रोपण कर सकते हैं। अगर उस समय नहीं कर पाए तो आप फरवरी में कर सकते हैं, ये उचित समय होता है जब सभी प्रकार के जो फल वृक्ष होते हैं उनका पौधा रोपण किया जा सकता है।
4: तो कभी भी नहीं कर सकते इसको, मतलब?
0: नहीं, कभी भी नहीं कर सकते।
4: ठीक है,
2: फोन करवा कहते हैं। आपको घड़ो घड़ो धन्यवाद। राम राम सर।
5: राम राम सर, खेती बाड़ी
2: जी, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपको स्वागत। नाम बताओ।
5: भंवरलाल जोड़ गोटली, तहसील मकराना से बोल रहा हूँ।
2: जी भंवरलाल जी, आपने काई परेशानी आ रही?
5: परेशानी आ गया, ये टमाटर के पेड़ लगे हैं, टमाटर के जो फल होते हैं ना वो जो खराब हो जाते हैं जल्दी।
0: टमाटर के फलों में देखो या तो कीड़ा लगा हुआ होगा या कोई बीमारी हो सकती है, तो काश्तकार भाई ये बताएं कि टमाटर में कोई कीड़ा लगा हुआ है क्या, अंदर कोई इल्ली लगी हुई है, काट रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखो अगर आपके टमाटर के अंदर वो झुलस रहे हैं तो उसमें बीमारी की वजह से वो झुलस रहा है, उसके लिए मैं दवाई बता रहा हूँ। मैंकोजेब नाम की एक दवाई आती है जिसे डाइएथेन M45 भी कहते हैं, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के और उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जैसे सबसे ज्यादा जो इसमें कीड़ा लगता है वो फ्रूट बोरर लगता है, फल छेदक जो कीड़ा है वो लगता है और फल जो काणे हो जाते हैं, तो उसके लिए काश्तकार भाई ये करें, जितने भी फल काणे हुए हैं हो रखे हैं उनको तो तोड़ के और उनको मैं गहरा

0: है जो मिट्टी में कहीं दबा दें या फिर उनको जला दें, और बाकी की जो अपनी फसल है उस फसल के ऊपर है जो एक दवाई है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसमें क्विनोल्फॉस ले सकते हैं, वो 25% आती है, उसका 1 से 1.5 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी में घोल बना के और उसका छिड़काव कर सकते हैं
1: जी। अब देवीलाल जी थोड़ा सा या आपसे पूछबो चावला कि जो काश्तकार भैया कपास की फसल लेबो चावे चा वाला टाइम में, तो वे कपास की फसल के लिए जो बीज दर्ज है वे कहीं तक है या बताओ।
0: कपास की फसल के लिए काश्तकार भाइयों बिल्कुल सही समय है, उचित समय है, इस समय कपास की फसल है वो लगा देनी चाहिए। तो पर कपास की जो वेराइटीज होती है वो कई प्रकार की होती है। काश्तकार भाई है जो आजकल है जो अपने बीटी काश्तकार है वो काफी ले रहे हैं, तो बीटी काश्तकार की जो बीज दर होती है वो 450 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है, और हेक्टर में अपन इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 1120 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। तो बीटी कपास लेना चाहते हैं तो ये बात है, और इसके अलावा अगर देसी किस्में काश्तकार भाई लगाना चाहते हैं तो देसी में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काश्तकार बुआई कर सकते हैं, और अमेरिकन किस्में अगर लगाना चाहते हैं तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लगा सकते हैं, और अगर हाइब्रिड किस्म जो संकर किस्में हैं वो काश्तकार भाई अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई करनी चाहिए
1: जी। अगर आप पपीता की फसल की नर्सरी अगर तैयार करबो चाहवा तो कई तैयारी आपने करनी पड़ेगी, लेकिन देखा चाहे कौन सा श्रोता आपने सागर जुड़ा छे पहली। हेलो राम राम साहब।
2: हेलो
1: राम राम साहब, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपको स्वागत, नाम बताओ।
2: राम राम जी, मैं कैलाश गुजर बोल रहा हूँ, ग्राम मैंने खुड़ तहसील रावा जिला दौसा से।
1: जी कैलाश जी, आपने काई परेशानी आ रही छे?
2: परेशानी साहब काई को आ रही, लेकिन वो कहते न पानी भर पहली पाल बांध ले तो बढ़िया रहो
1: जी। जी सर।
2: तो मूंगफली की अगाड़ी फसल करवा की तैयारी आ रही है, तो कोई बढ़िया किस्म सके गिरनार की?
0: देखो काश्तकार भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और आपने एक वो भी बताया, एक कहावत बताई कि पहले से ही पाल बांध लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, यानी समय रहते अपन को तैयारी कर लेनी चाहिए। और काश्तकार भाइयों अभी समय है अपने खेत की अपन तैयारी करें और आदान व्यवस्थाओं की तैयारी करें। तो आपने पूछा है कि मूंगफली में कौन सा बीज अपन काम में ले सकते हैं, कौन सी किस्में काम में ले सकते हैं, तो इसमें दो प्रकार की किस्में आती है, एक तो झुमका किस्म आती है जो थोड़ी सीधी बढ़ती है, और दूसरी जो किस्म होती है थोड़ी फैलने वाली किस्म होती है। तो अगर फैलने वाली किस्म आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें RS1 है, M13 है, ये बहुत अच्छी वेराइटीज है, इनको आप काम में ले सकते हैं। HNG10 है, ये वेराइटी भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप झुमका किस्म काम में लेना चाहते हैं तो GG2 है, GG10 है, GG20 भी है, और एक किस्म और है उसको भी आप काम में ले सकते हैं, TG37A। और जो झुमका किस्में होती है उनका जो बीज दर है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, और जो फैलने वाली जो किस्में हैं उनकी जो बीज दर है वो लगभग 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर है।
1: धन्यवाद साहब, फोन कर बताइए, आपको खूब खूब धन्यवाद। राम राम साहब।
3: राम राम जी।
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, नाम बताओ आपको।
3: मैं ये पूछ रहा था आशा जी।
1: जी।
3: कि हमने बेटी कपास बोई थी 11 अप्रैल को।
1: जी।
3: लगभग 40 दिन से ऊपर हो गया उसको, एक एक फुट की बढ़ गई है, अच्छी फसल है।
0: जी।
3: उसमें पानी कब लगाए?
0: पानी अभी, पानी तो ये देख के लगाना चाहिए अपन को कि फसल को कितनी आवश्यकता है। यदि यदि यदि फसल में आप देखते हैं दिन में आप दोपहर के समय जाएं कि फसल थोड़ी झुलस रही है, और शाम के समय अपन देखें उसमें कि वो वापस पत्ते हैं बिल्कुल सही हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि शाम के समय भी अपन देखें कि पत्ते हैं थोड़े झुलसे हुए हैं तो निश्चित रूप से है जो पानी लगा देना चाहिए।
3: जी
1: धन्यवाद सर, उम्मीद है आपकी समस्या को समाधान हो गए बोलो। और आप बात कर रहे थे अदिति जी पपीता की फसल की नर्सरी के बारे में, जब तक श्रोता और जुड़ गया तो इन्हें बाद में ही पूछ लेवा ना, पहले बात कर लेवा। राम राम साहब।
4: हेलो।
1: हेलो राम राम, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत।
4: नमस्कार बहन जी, साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताए काश्तकार भाई।
2: सर मैं मोहाड़ा मंडी रिंग रोड के पास से बोल रहा हूँ, राजूलाल।

0: प्रधान रिंग रोड के पास से
1: जी
2: बताएं
0: सर, वो बैंगन लगे हुए हैं कांटे की और उसमें क्या है कि माथे भी कीड़े लगे, दवाई भी डाल दी और वो मर रहे नहीं है।
2: अच्छा, तो आपके क्या जो शूट बॉर्डर है वो लग रहा है तना छेदक जिसे कहते हैं अपन, और
0: ऊपर से कट रहा है वो ऊपर से।
2: हाँ हाँ, उसमें ऐसा हो रहा होगा आपके कि इसकी जो लट होती है, इसका जो वेस्क होता है वो तने के अंदर अंडे देता है, उसमें से जैसे ही वो लार्वा निकल के और उसको वहां से ऊपर से खाना स्टार्ट कर देता है, तो जिस जगह पे ये अंदर घुसा हुआ है उसके ऊपर की जो टहनी है वो मुरझा जाती है बिल्कुल, ऐसा ही है ना। और इसके जो फ्रूट्स है उसके अंदर भी वो फ्रूट्स भी काड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए जैसे मैंने टमाटर में बताया था काश्तकार भाई, वैसे ही आप कर सकते हैं। देखो, इसका अपने को पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इमीडिएटली तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी अपने जो फ्रूट्स है, अपने फल है जिसमें जो काड़े हो रखे हैं वो, और जहां पे ये कीड़ा घुसा हो उसका थोड़ा सा नीचे से उस टहनी को ऊपर काट दें, और ये जो अपना जो खराब भाग है और जो काड़े फ्रूट्स है उनको कहीं साइड में ले जाके उनको गहरा जमीन में दबा दें या उनको जला दें। जो बाकी बचे हुए अपने जो पौधे हैं, बाकी जो बचे हुए पौधे हैं उनके अंदर एक दवाई है जो मैंने पहले बताई थी आपको, क्विनोल फोस नाम की दवाई आती है, तो उसका 25% आती है और उसका 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के और उसका छिड़काव करना चाहिए। अब आपने ये बताया कि हमने दवाई दे दी है, तो आपने कौन सी दवाई दी है उसमें?
0: हमने लार्वा दवाई दी है प्राइवेट कंपनी की, लावा।
2: नहीं, उसका नाम बताएं दवाई का।
0: दवाई का नाम है लावा
2: ना, ये जो नाम है ये क्या है कि ट्रेड नेम है, इसका वास्तव में केमिकल नेम नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके अलावा काश्तकार भाई अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो इसके वेस्क होते हैं ना, इसके वेस्क, तो उसमें अपन शाम के समय है जो उसमें अपन लाइट ट्रेप लगा सकते हैं, या जैसे लांटेन वगैरह जलाते हैं या बल्ब वगैरह जला सकते हैं, तो उससे इसके जो वेस्क है ना, इन कीड़ों के जो वेस्ट कीट है वो उसकी तरफ आकर्षित होते हुए आएंगे, और वो क्या है कि नीचे अपन एक 5% केरोसिन मिला हुआ पानी रख दें तो वो उसमें गिर के और उसमें खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन फेरोमोन ट्रेप भी काम में ले सकते हैं।
0: अच्छा, ये माथेबंदी भी हो रही है, गूंदा हो गए पत्ते।
2: किस चीज में हो रही है माथाबंदी? इसी में टमाटर में, इसमें बैंगन में हो रही है, नहीं और किसी फसल में?
0: बैंगन में।
2: बैंगन में जो माथाबंदी हो रही है वो उसमें पत्तियां छोटी छोटी हो गई होगी।
0: हाँ, सिकुड़ गई पत्तियां।
2: हाँ, पत्तियां सिकुड़ गई और छोटी छोटी हो गई, ये एक माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है और उसको अपन किसी दवाई से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो रस चूसने वाले जितने भी जो कीट है वो इस माइकोप्लाज्मा को, जो रोग ग्रसित पौधा है उससे स्वस्थ पौधे हैं उसके ऊपर लेके जाता है, तो इन रस चूसक कीटों को अपन को मारने के लिए एक दवाई है जो सिस्टमेटिक दवाई है, उसमें आप डाइमिथोएट है ये 30% आती है, या मिथाइल डिमेटोन है वो 25% आती है, या फिर मेलाथियन सबसे सेफ वाली है वो है मेलाथियन 50% आती है, तो इसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के और इसका छिड़काव करें, और जिन पौधों में ज्यादा ही ये दिक्कत हो रही है उनको उखाड़ के नष्ट कर दें।
1: फोन करवा कर दें आपको, घड़ो घड़ो धन्यवाद सर। तो देखो साहब, पपीता की नर्सरी की आप जानकारी लिए पूछा रहे, तो वह बताओ साहब।
2: पपीता की नर्सरी करने के लिए अभी बिल्कुल उचित समय है, तो सबसे पहले तो अपन ये ध्यान दें कि कौन कौन सी किस्म है वो अपन काम में ले सकते हैं, तो इसमें किस्में हैं कुर्ग हनी ड्यू है, CO2 है, पूसा नन्ना है, पूसा मैजिस्टिक है, और इसके अलावा रेड लेडी जिसे ताइवान अपन कहते हैं वो भी है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं, और 1 हेक्टर में अगर अपन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 250 ग्राम बीज है वो पर्याप्त रहता है
1: जी। राम राम सर। देखो सर, फोन उठाता ही फोन कट गो, तो अब आपसे यह जान बचाओ ना कि अबार को जो टाइम छे उमा माका का जो काश्तकार भाई छे वे खेती बाड़ी से जुड़े से कोई काई काम करे कि वहाँ की आबाड़ी जो फसला छे वहाँ में वहां उत्पादन चोखू मिला है, मेहनत को पूरा फायदा मिला है।
2: देखो, जो पहले बात अधूरी रह गई थी वो ये है कि अभी है जो गर्मी की जुताई है वो निश्चित रूप से ही करनी चाहिए, कि एक काम और तीन फायदे इससे होते हैं, जितनी भी जो खरपतवार उगी हुई है अगर गर्मी की अपन गहरी जुताई करेंगे, गहरी जुताई का मतलब है लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी, और ये मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जो MB प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है उससे करनी चाहिए, और इससे फायदा

0: को ये होगा कि जैसे ही बारिश होगी तो खेत के अंदर जो पानी जो गिरेगा बारिश का वो बह के बाहर नहीं जाएगा और उससे खेत में कटाव नहीं लगेगा और मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ेगी, खरपतवार अपनी सारी नष्ट हो जाएगी और जो कीड़े और बीमारियां हैं ये जैसे ही ये ऊपर आएंगे, जैसे इनके जो लार्वा है या इनका इनके शंकु है या इनके वयस्क है वो ऊपर आएंगे तो गर्मी की वजह से वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन को पौधे जो अपनी जो खेत है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ रही है, खरपतवार नष्ट हो रहे हैं और उसकी जो उर्वरता है वो भी बढ़ रही है। तो किसान भाइयों को इस समय निश्चित रूप से ही गर्मी की जुताई है वो कर लेनी चाहिए। इसके अलावा है जो काश्तकार भाई अपने पहले प्लानिंग करने कि भाई खेत में अपन को क्या लगाना है और उसके हिसाब से मिट्टी पानी की जो जांच है वो अवश्य ही करवा लें, जिससे ये पता पड़ेगा कि जमीन में पहले से ही तो कितने पोषक तत्व पड़े हुए हैं और अमुक फसल को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से वो अपने खाद एवं उर्वरक की व्यवस्था कर लें और बीज की व्यवस्था कर लें।
1: जी सर। तो अदिति जी, देवीलाल कुमावत, उपनिदेशक कृषि एवं सीनियर फैकल्टी आत्मा जयपुर, आज अपने स्टूडियो में आया और इतने बेहतर तरीका से वहां का जो काश्तकार भाई चाह वहां का जो सवाल चाह जो समस्या जी वहां को समाधान करया, इतना ही आपको खूब खूब धन्यवाद सा। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारों कर दीजिए कि आज को जी को टाइम छे कार्यक्रम खेती बाड़ी को वो पूरा होते जा रहे, तो श्रोतावा दिराओ आगे आशा ने
2: और अदिति ने
1: चार करा राम राम सा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर से, अलका याग्निक और इला अरुण की युगल आवाजों में। गाने के बोल लिखे राकिब आलम ने, संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म है मैंने प्यार किया, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुनिए। असद भोपाली के लिखे गाने के बोल हैं, संगीत राम लक्ष्मण का।

मैंने प्यार किया फिल्म से ये प्यारा सा गाना आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गाने के बोल लिखे असद भोपाली ने, संगीत था राम लक्ष्मण का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है दिल्ली सिक्स, कलाकार मोहित चौहान, गाने के बोल प्रसून जोशी की लिखी हुई, संगीत निर्देशन ए आर रहमान का।

1986 मूवी से ये सॉन्ग आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में। गाने के बोल लिखे प्रसून जोशी ने, संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए, फिल्म है, फिल्म का नाम है सरफरोश। कलाकार हैं कुमार सानू, अलका याग्निक, गीतवत किया समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

सरफरोश फिल्म से ये प्यारा सगाना। आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की युगल आवाजों में। गाने के बोल लिखे समीर ने, संगीत था जतिन दलित का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है सड़क, कलाकार अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में सुनिए। गीत निर्देशन समीर का, संगीतवत किया नदीम श्रवण ने।

फिल्म सड़क का ये गाना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। गाने की बोल लिखी समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला व अंतिम गाना सुनिए, फिल्म है विरासत, कलाकार कुमार सानू और जसविंदर नरूला। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया अनु मलिक ने, सुनिएगा।

फिल्म विरासत का ये प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे कुमार सानू और जसविंदर नरूला की आवाजों में। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया अनु मलिक ने और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यही संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चरण से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं और अब से बस थोड़ी देर में पहले आप सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन, फिर 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, 9:00 सुनिए न्यूज 8:09 का प्रसारण, 9:15 पर उर्दू में समाचार सुनवाए जाएंगे और रात्रि 9:30 पर सुनिए इंग्लिश प्रोग्राम कंट्री वाइड इनसाइट्स का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन में आज आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता गोरखपुर में संपन्न हुई। अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन कल से झारखंड के रांची में शुरू। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 117 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात की टीम जो है वो पहले ही प्लेऑफ का अपना टिकट कटा चुकी है, जबकि चेन्नई चाहेगी कि आज का मैच जीता जाए, अच्छे अंतर से जीता जाए और टॉप चार में अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: ईडन गार्डन्स में कल करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश ने टीम के लिए 18 गेंद में सर्वाधिक 32 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लिए। 148 रन का सामान्य लक्ष्य केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोलकाता की ओर से मनीष पांडे ने 33 गेंद में 45 और रोबमैन पॉवेल ने 30 गेंद में 40 रन बनाए। अंतिम ओवर में रिंकू सिंह 9 और अनुकूल रॉय ने 4 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिलाई। कॉर्बिन बॉश ने मुंबई के लिए सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिला। मनीष पांडे को उनकी पारी और शानदार फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी और राजस्थान और पंजाब के अगले

0: मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि कोलकाता अपने कल के मैच के बाद आने वाले लीग के सभी मैच बहुत ध्यान और सतर्कता से खेलेगी भी और देखेगी भी। और अब आईपीएल के बाद रुख करते हैं हॉकी के टर्फ का, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जापान के ताकामिघारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए केतन कुशवाहा को टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली।
2: सावन कुमार और आयुष रजक गोलकीपर की भूमिका में टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि डिफेंडर के रोल के लिए अंश बहुता, अरमान सोरेंग, आशीष तानीपूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी और रोमित पाल को चुना गया है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी राहुल यादव, प्रेमचंद सोए, वरिंदर सिंह, करण गौतम और सिद्धार्थ बेन के कंधों पर होगी। वहीं कप्तान केतन, आकाशदीप, गाजी खान, शाहरुख अली और प्रहलाद राजभर के साथ फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगे। भारत को पूल ए में दक्षिण कोरिया, मेजबान जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के साथ रखा गया। भारतीय टीम अपने पूल स्टेज कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 31 मई को मेजबान जापान से, 1 जून को साउथ कोरिया से और 3 जून को चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। पूल ए और पूल बी की टॉप दो टीमें सीधे 5 जून को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 जून को खेला जाना है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि ये पूरा वर्ष बड़ी प्रतियोगिताओं का है, जहां एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजन होने हैं और सभी खेल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हॉकी के बाद चलते हैं मलेशिया के कुआलालंपुर, जहां बैडमिंटन कोर्ट में आज मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत की अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में आज खेले गए भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों का पूरा हाल।
3: अश्मिता चाहिला ने क्वालिफायर और राउंड ऑफ 32 के बाद आज प्री क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। युवा अश्मिता ने सिर्फ 27 मिनट चले मुकाबले में मलेशिया की गोहजिन वेई को 21-13, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना डेनमार्क की 8वीं वरीयता प्राप्त लाइन होजमार के जर्सफेल्ट से होगा। हालांकि अश्मिता के अलावा भारत का कोई भी खिलाड़ी जीत दर्ज नहीं कर सका। मालविका बंसोड़ डेनमार्क की केजर्सफेल्ट से 21-16, 8-21 और 15-21 हार कर दूसरे दौर में बाहर हो गई थी। वहीं देविका सिहाग चीन की चेन युफेई से 16-21 और 13-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस बीच एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्कारुनन की हार के साथ ही भारत का मेंस डबल अभियान भी समाप्त हो गया है। मिक्स डबल्स में सात्विका रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी अमरीका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाय के हाथों 12-21 और 25-27 से हार का सामना करना पड़ा। अब इस टूर्नामेंट में अश्मिता एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को उम्मीदें होंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय उम्मीदों का भार अपने कंधों पे लिए अश्मिता लगातार क्वालिफायर्स, फिर राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज करते हुए अब राउंड ऑफ 8 की तरफ पहुंच गई हैं, यानी क्वार्टर फाइनल, जहां वो अपना कल मुकाबला खेलने उतरेंगी। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज पानी की धार के बीच खिलाड़ी पदकों के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आए। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता का आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में समापन हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के एक बड़े आयोजन स्थल के रूप में सामने आ रहा है।
4: रामगढ़ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। रामगढ़ताल पर 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ताल इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है।
1: तो नई पहचान बनाता हुआ रामगढ़ ताल रोज नए कीर्तिमान और कमाल स्थापित कर रहा है। और अब इन खेलों पर अधिक अपडेट के साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रेमचंद। प्रेमचंद, आज गोरखपुर में किस किस टीम की नौका पार लगते हुए नजर आई है और बताइए कि आज के मुकाबलों के नतीजों में कौन कौन सी टीम बाजी मारते हुए दिखी?
5: जी जी जी बालकबर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ओवरऑल चैंपियन बनी, जिन्होंने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते।

0: बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण 1 रजत व 1 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की टीम ने भी इस बार एक गोल्ड मेडल जीता है। बालक वर्ग के क्वाड्रपल स्कल के फाइनल में यूपी की टीम विजयी रही। इस मुकाबले में दूसरे स्थान पर बंगाल और तीसरे स्थान पर उड़ीसा की टीम रही।
1: जी प्रेमचंद, हमें इस मैदान के बारे में भी बताइए कि बड़ी रोचक बात है कि गोरखपुर का ये मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्रमंडल तक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।
0: जी जैसा कि आपने अभी सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि रामगढ़ ताल जो है वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में बन चुका है, एक वाटर स्पोर्ट्स हब बन गया है। यहाँ पर 49 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यूपी में देखें तो वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बहुत समृद्ध है। प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, राप्ती जैसी नदियां हैं जहां वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में बलिया, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर जैसे शहरों में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल गोरखपुर में बहुत सारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया था, जिसमें कम से कम 30,000 दर्शक जो है का ये स्टेडियम बनेगा। जी
1: बिल्कुल, एक बेहतर केंद्र के रूप में उभरते हुए भारत के तमाम शहर और उसी कड़ी में गोरखपुर भी। और अब गोरखपुर से चलते हैं झारखंड के रांची की तरफ, जो कि तैयार है नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन की मेजबानी के लिए, जो कल से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर, अन्नू रानी, तजिंदर पाल सिंह तूर, सर्वेश कुशारे और तेजस्विनी शंकर जैसे भारतीय दिग्गज एथलीट भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आएंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: भारत की प्रमुख घरेलू एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन, जिसे आमतौर पर फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाले इस साल का यह आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एकमात्र चयन ट्रायल के तौर पर काम करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने हैं। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में सचिन यादव, रोहित यादव और किशोर जेना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वहीं महिलाओं में अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर पुरुष वर्ग में और शैली सिंह महिला वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला बूबकर और शॉट पुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर खेलते नजर आएंगे। राजेश रमेश 400 मीटर, मोहम्मद अफसल 800 मीटर और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के 400 मीटर स्पर्धा में विथया रामराज एक्शन में नजर आएंगी, जबकि तेजस्विनी शंकर कथानॉल में हिस्सा लेंगे। भारतीय स्पोर्ट्स कैन।
1: तो रोमांच तैयार होने को बेकरार है। और अब बात करते हैं हॉकी कोच बलदेव सिंह की, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बसे एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंड को बेहतरीन हॉकी प्रतिभा का केंद्र बना दिया है। सुनते हैं बलदेव सिंह के जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
3: जिंदगियां सवारना खेल खेल में, श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026। 15 नवंबर 1950 को लुधियाना के किसान परिवार में जन्मे बलदेव सिंह का बचपन आर्थिक तंगी में बीता।
4: मैं उस समय बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार मैदान में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मैच देखा जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनूं।
3: बलदेव सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेंगलुरु से हॉकी कोचिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया और 1981 में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करके हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में कोच के पद पर आ गए। शाहबाद उनकी कर्म भूमि बन गया और उन्होंने सबसे पहले यहाँ हॉकी ग्राउंड तैयार किए। बलदेव सिंह जी के कड़े परिश्रम और अनुशासित ट्रेनिंग से उनके खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। जल्दी ही वे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी नियुक्त हुए और टीम को कई सफलताएं दिलाईं।
4: मैंने देखा कि लड़कियां भी खेलना चाहती और उनके सामने कई अड़चनें थी। हमने उनके परिवार वालों को समझाया।
5: उन्होंने बड़ी गाड़ी ली बच्चों की मदद के लिए। जब प्रतियोगिताएं दिल्ली या कहीं दूर होती थी तो ये लड़कियों को घर लेने और छोड़ने भी जाते थे और आवश्यकता

0: पढ़ने पर ये आर्थिक सहायता भी देते थे।
1: हॉकी खेलने से यहाँ के बच्चों को मान सम्मान और जॉब भी मिली। लड़कियाँ आगे आएंगी तो इंडिया आगे आएगा।
2: बलदेव सिंह जी की ट्रेनिंग में लड़कियों की स्कूल टीम ने भी कई टूर्नामेंट जीते और आगे चलकर देश का गौरव बनी।
3: मेरे लिए वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, मेरे लिए वो एक गाइड, मेंटोर और एक फादर फिगर, जिसको फिक्र रहती थी कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए।
4: उस समय हमारे शाहबाद में कहावत थी कि किसी के घर बेटी पैदा हो तो उसे बलदेव जी के मैदान में छोड़ दो, उसकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी।
2: शाहबाद से इतने खिलाड़ी निकलने लगे कि इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाने लगा। सन 2017 में बलदेव सिंह जी भारत की ओलंपिक टास्क फोर्स में भी शामिल हुए और भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में योगदान दिया।
1: मेरी पूरी जिंदगी हॉकी और खिलाड़ियों के लिए है।
2: सच ही है, बलदेव सिंह गुरु नहीं, खुद गुरुकुल है। श्री बलदेव सिंह, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
5: तो कोटि कोटि नमस्कार बलदेव सिंह जी को, जो कि हॉकी की एक पूरी पीढ़ी के लिए किसी शिल्पकार से कम नहीं, और उनके बनाए हुए तमाम खिलाड़ी आज जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो शायद बलदेव सिंह जी का सीना भी फक्र से चौड़ा होता होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी, खेल जगत की, खेल मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
7: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार

0: 26 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।

0: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
1: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है।

0: विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुडमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फिर वही रात है। रात के इस पहर ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का इस संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चयन वैन सब उजड़ा।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि

उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाए।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test. Them gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्र।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। रात के 10 बजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

तो आज के इस खूबसूरत शाम में हम बात करेंगे उस दौर की, जब प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। जी हाँ, वो दौर जब मोबाइल नहीं थे, ऑनलाइन चैट नहीं थी, लेकिन इंतजार था, धड़कनों में बसा हुआ विश्वास था और छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ पूरा प्यार था।

जी हाँ दोस्तों, दिल क्या करे, कब किसी को भी प्यार हो जाता है। ऐसा ही कुछ पुराने जमाने में जब प्यार जताने के तरीके भी कितने अलग थे। किसी के घर के सामने से बार बार गुजरना, खिड़की की तरफ नजर उठाना, साइकिल की घंटी में छुपा संदेश और तो और किताबों में रखे सूखे गुलाब। जी हाँ, तो आइए आज यादों के उसी सुनहरे दौर में चलते हैं जहाँ मोहब्बत की आवाज धीमी थी लेकिन असर बहुत गहरा था।

आज के दौर में मैसेज आते हैं और पल भर में गायब भी हो जाते हैं, लेकिन वो समय था जब एक खत कई दिनों का इंतजार लेकर आता था और पोस्टमैन की साइकिल की आवाज सुनते ही दिल तड़प उठता था। खत खोलने से पहले तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, साई से लिखे शब्दों में खुशबू होती थी, हर लाइन में धड़कन छुपी होती थी। कई लोग तो चिट्ठी में सिर्फ इतना ही लिखते थे, अपना ख्याल रखना, लेकिन उस एक लाइन में पूरा प्रेम समाया होता था।

आज तो पुराने जमाने का प्यार बहुत शोर नहीं करता था, वो आंखों से बात करता था। स्कूल की छुट्टी में एक झलक मिल जाए तो बस पूरा दिन खूबसूरत हो जाता था। मेला हो, शादी हो या गांव की कोई चौपाल, बस एक नजर देखने के लोग घंटों इंतजार करते थे।

दोस्तों, आज अगर रिप्लाई देर से आए तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन पुराने दौर में इंतजार भी प्यार का हिस्सा हुआ करता था। मुलाकात महीने में एक बार होती थी और उसी एक मुलाकात की याद कई महीनों तक मुस्कुराती रहती थी।

जी हाँ दोस्तों, ये मुलाकात एक बहाना है। आज भी ये शब्द हमें खूबसूरत एहसास से भर देते हैं, रूह में खुशबू से उतर आते हैं और सहेज कर रखे हुए जो खत है वो फिर से पढ़ने का मन करता है। जी हाँ, यही प्यार, यही रुमानियत जो हमारी कल्पनाओं में उड़ान भरती रहती है, लेकिन इन हवा इसको तभी मिलती है जब दूसरी तरफ से भी इसे कबूल किया जाए।

श्रोताओं, इस फिल्म संगीत के सफर में एक छोटा सा लेते हैं अंतराल। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी बांसवाड़ा के मराठी चैनल में और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक प्यारी सी कोई बात, मीठी सी छेड़छाड़, रोम रोम में ऊर्जा, मन में जोश और उत्साह भर देने की, जो जीने की इच्छा बढ़ा दे, वही तो प्यार है।

से जी हाँ, मुझे इश्क है तुझे से। दोस्तों, पुराने दौर में रिश्ते टूटते कम थे क्योंकि लोग मनाना जानते थे। टूटने पर घंटों दरवाजे के बाहर इंतजार करते, माफी के लिए हाथ से लिखा नोट देना या पसंदीदा गीत गुनगुनाकर मनाना, ये सब प्यार के हिस्से थे।

दोस्तों, ये सिर्फ एक एहसास है, शब्दों में बयां करना मुश्किल। इसे सिर्फ दिल की गहराइयों से ही महसूस किया जा सकता है। अब अगर यह सोचा जाए कि प्यार रोमांस की शुरुआत कब हुई, तो ये कहना नामुमकिन है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय बदल गया, तरीके बदल गए, लेकिन प्यार आज भी वही है जो बिना कहे महसूस किया।

दोस्त तो कहते हैं प्यार कभी किसी नियमों में नहीं बनता। जब दिल में उतरता है तो इंसान को थोड़ा मासूम, थोड़ा बेपरवाह बना रहता है। कभी किसी की मुस्कान में सुकून मिल जाता है तो कभी किसी की यादें रातों की नींद चुरा लेती है। और शायद इसलिए मोहब्बत को समझाने की नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत होती है।

जी हाँ दोस्तों, जो मन का भाग गया वो भाग गया। ना हर पल तस्वीर थी, ना सोशल मीडिया पर इजहार, फिर भी लोग एक दूसरे को जिंदगी भर याद रखते थे। वो प्यार धीमा जरूर था लेकिन सच्चा था।

दोस्तों आज फिल्म संगीत में आपने जूली, सरस्वती चंद्र, संगम, कश्मीर की कली, खानदान, तेरे घर के सामने, कटी पतंग, उम्मीद, ताजमहल, चित्तचोर इन फिल्मों के नगमे सुने हैं।

दोस्तों, आज के फिल्म संगीत में बस इतना ही। उम्मीद है पुराने जमाने के प्यार की ये मीठी मीठी यादें आपके दिल को और भी करीब से छू गई होंगी। अपनों को समय दीजिए, एहसासों को संभाल कर रखिए, क्योंकि सच्चा प्यार हर दौर में सबसे खूबसूरत एहसास होता है। तो इसी के साथ फिल्म संगीत से दीजिए इजाजत। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट

0: स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM रेट 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। रात के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः रेडियो तरंगों के जरिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

रात के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः रेडियो तरंगों के जरिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।